हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 31वीं तिथि। तदनुसार 22 जुलाई 2026। प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः काल के 6 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को

0: विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:05 हो रहे हैं। समय है आज के विचार का। विषय है अहंकार। वाचक स्वर है श्री मिलन पांडे का।
3: अहम हमारा स्वरूप नहीं है, अहम दृश्य है और जानने में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतर्गत वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही एक व्यापक ज्ञान के अंतर्गत अहम भी दिखता है। जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का विभाग नहीं होता, एक आकाश के अंतर्गत ही अनंत तारे दिखते हैं, ऐसे ही एक ज्ञान के अंतर्गत अनंत अहंकार अर्थात मैंपन दिखते हैं। जैसे सबके सब तारे एक आकाश में हैं।

0: ऐसे ही सबके सब अहंकार एक ही ज्ञान में हैं, वह ज्ञान हमारा स्वरूप है। अहम हमारा स्वरूप नहीं है, अहम को अपना स्वरूप मान लिया जाए यही हमसे गलती होती है। स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वाला है। जैसे हम आँख से सब वस्तुओं को देख सकते हैं पर आँख से आँख को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे सब देखता है वही आँख है। ऐसे ही जिससे मैंपन दिखता है वही तत्व है। तात्पर्य है कि मैंपन इदंता से देखता है, पर मैंपन को देखने वाला तत्व इदंता से नहीं देखता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं। जागृत और स्वप्न में तो अहम रहता है पर सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, अपितु अविद्या में लीन हो जाता है। ज्ञान मात्र प्रतीति का प्रकाशक, आश्रय और आधार है। तात्पर्य है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन इनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसी ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि, मध्य और अंत, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब के सब एक ज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित होते हैं। जैसे प्रकाश के अंतर्गत आदमी आते हैं जाते हैं पर प्रकाश आता जाता नहीं है। सब आ जाएं तो प्रकाश रहता है, सब चले जाएं तो प्रकाश रहता है, थोड़े आ जाएं तो प्रकाश रहता है, कोई न आए तो प्रकाश रहता है। प्रकाश में न कोई बाधा लगती है, न कोई हानि होती है, न कमी होती है, न वृद्धि होती है, न परिवर्तन होता है। संसार में कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन स्थायित्व हमें ज्ञान के अंतर्गत ही मिल सकता है। और इस प्रकार देखा जाए तो अहंता को अगर इदंता से देखें तो जीवन मुक्ति।
1: आप सुन रहे थे आज का विचार, विषय था अहंकार, वाचक स्वर था श्री मिलिंद पांडे का। सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचारों से अहंकार का नाश। अहंकार का नाश तो मन निर्मल। निर्मल मन दयालु।

और परोपकार परम धर्म। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:10 हो चुके हैं। समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं आज गणेश भजन के साथ।

भक्ति के कार्यक्रम वंदना में ये प्रस्तुति थी नितिन मुकेश अनुपमा देश पांडे और साथियों के स्वरों में। लीजिए सुनिए अगली प्रस्तुति, अगला भजन। स्वर है अनूप जलोटा और साथियों का।

जगजीत सिंह और साथियों के गाए इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:30 बजने को है, समय है रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 262 से दोहा संख्या 264 की अंतिम चौपाई तक का सास्वर पाठ।

झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातःकाल के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में किसान श्रोताओं के लिए लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम खेती की बातें। फव्वारा सिंचाई और जल संरक्षण विषय पर जानकारी देंगे श्री सत्यनारायण शर्मा। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7:00 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात में चर्चाएं रहेंगी आयुष, चिकित्सा और स्वास्थ्य, सुबह की सैर के फायदे, विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन जैसे विषयों पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण समय हमारी पहली सभा में रहेगा सुबह 7:30। तत्पश्चात सुबह 10:00 आप कार्यक्रम फिल्म संगीत में नई फिल्मों से गीतों का आनंद ले सकेंगे। सुबह 11:00 कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 का समय भी रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। हमारी दूसरी सभा में आप कार्यक्रम फिल्म संगीत में शाम 6:05 पर युगल

गीतों का आनंद उठा सकेंगे। रात्रि 8:15 और 9:15 का समय भी रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: सुबह 9:15 का समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। रात्रि 7:45 भी आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा हमारी दूसरी सभा में 8:30 और प्रातःकालीन सभा में 9:10। सुबह 8:30 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजस्थानी कहानी हेली। कहानीकार रहेंगे डॉक्टर चेतन स्वामी। सुबह 9:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT का। दिन में 12:10 पर भी आप लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का आनंद उठा सकेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1:05 पर चर्चाएं रहेंगी वर्किंग वुमेन के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, साथ ही साथ अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण, हस्तशिल्प को बढ़ावा, बारिश के मौसम में पेट का इन्फेक्शन। साथ ही साथ महिलाएं सुनेंगी वार्ता, संस्कारों की शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षा। वार्ताकार होंगी श्रीमती स्नेहलता शर्मा। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में युवा साथी कार्यक्रम युववाणी में आज की बात सुनेंगे इंटरनेट और ज्ञानार्जन। लघु जानकारियां होंगी धूम्रपान फैशन नहीं है, गुलाबी शहर जयपुर, ऊर्जा और उसके स्रोत, विटामिन और पोषण जैसे विषयों पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए 7:00 होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चाएं रहेंगी खरपतवार नियंत्रण से लाभ, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, प्रधानमंत्री सौर घर योजना, अतिवृष्टि बाढ़ के समय पशुधन प्रबंधन जैसे विषयों पर। आकाशवाणी दिल्ली के हमारे आज के प्रसारण में 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा और 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन सकेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के हमारे आज के प्रसारणों पर पुनः ध्यान दे लें। 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा संसद समीक्षा और 10:00 का समय रहेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के प्रसारण का। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 हो रहे हैं। किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फव्वारा सिंचाई और जल संरक्षण विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री सत्यनारायण शर्मा।
1: किसान भैया राम राम। आज अपा बात करा हाँ फव्वारा सिंचाई और जल संरक्षण के बारे में। वो तो अपा जाना यहाँ के अभी राजस्थान में बिरखा की कमी और अकाल कोई नई बात को नहीं है। कणी पानी घणो बरसे तो कणी अकाल भी पड़ सके। आठेरी कृषि जी की है बस जलवायु अनुरूप होया करे और अनुरूप जीवन यापन करनो आठेरो लोक जीवन एक अभिन्न अंग जी को बुमान्यो कहे। प्राचीन कालों शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में जल संरक्षण ने पर्याप्त महत्व दियो जाऊं तो और जट ताई उनता आने वाले जल संकट निपटन सारू अपने पुरखा जी कहा, बुजुर्ग जी कहा, बडेरा जी कहा, तालाब कुंड कुआ बावड़िया न केवल बनाऊंता भी रसा कर सके बिहारी चौकी व्यवस्था भी करता और पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा भी प्रदान करता। पर भगत रसा के चीजा जी की बदल गई है और कई चीजा जी की है भगत रसा के हट गई नई चीजा जी को वापर की बिहार सके। तो विकास यात्रा रे बढ़ते दायरे सगू नहर और विद्युत कृत नलकूप जी का जगह जी की सिंचाई सारू ले रही है और यहाँ सिंचाई रे सगू एक और बात है कि भाई ए सुलभ तो है पर कमजोर मानसून और चलते कई बार वो देखा कि भी नहर

0: में भी अपर्याप्त जल प्रवाह स्थिति बन जाया करे। कई लारले कई सालों भूजल दोहन भी इतो गयो है कि भी अपने जिको जमीन रो जिको जल रो स्तर है वो दिनों दिन कम होते जा रही है। तो समस्या भूजल री कमी और बीर अतिदोहन री कोनी बीर सागे सागे गुणवत्ता री भी है। देश रा अनेक हिस्सा और राजस्थान में अधिकांश शुष्क क्षेत्र जी का है, बटे किसान जी का है सिंचाई जल री कमी और बिहार क्षारीय और लवणीय होने री समस्याओं भी सामनो जो है करे। तो सिंचाई जल री कमी रे कारण किसान आपरे खेत रो कुछ भाग ही सिंचित कर पावे। इस स्थिति में यदि बिहारो जल जी को है वो भी समस्याग्रस्त रहे या खेत में उगाउन खातर बियाने खातर सीमित ही फसल रह जावे, कभी कई फसल ऐसी है जिका में सिंचाई जरूरी आवश्यकता ज्यादा व्यय करे, तो सिंचाई जरूरी मात्रात्मक और गुणात्मक कमी रह सके सके किसान ने उन्नत सिंचाई विधियां सिंचाई जरूरी क्षमता लवणीय व क्षारीय जरूरी खातर उपयुक्त फसल रो चुनाव भी जरूरी है और जल संरक्षण जिको है वो भगत रह सके बहुत ही जरूरी है सा। तो इसी एक अपा यह है कि भाई उपलब्ध जल जिको है वो उच्चतम प्रयोग अपा किया करा घनी फसल किया लेवा बीरे सारू कई तरह की सिंचाई पद्धतियां जी की है अपा अपनाया करा। एक इसी सिंचाई पद्धति है फवारा सिंचाई विधि जिको है पानी ने फवारे रूप में भूमि पर गिराया करे। ई विधि द्वारा ऊंचा नीचा खेत में भी आप आसानी सिंचाई कर सका। सिंचाई रे नाला बनाने रे जरूरत को रहा नहीं। गर्मी और पाले से फसल रो बचाव कर सका। कम सिंचाई को है वो होने बाद भी आप भूमि में क्षारियता जी की है बिन बढ़ने से रोक सका। कम मेहनत रे मैंने एक समान सिंचाई जी की है पूरे खेत में कर सका। पानी री बचत कर भी अपना फसल जिकिए भी उत्पादकता बढ़ा सका। नहरी क्षेत्र में भी स्टोरेज टैंक जठे अपना पानी ने भंडार इकट्ठो करला और भी छोटी मोटर द्वारा फवारा सिंचाई कर अपना सेम जैसी समस्या जिकिए भी ने भी नियंत्रण कर सका। फवारा सिंचाई पद्धति जी की है भी मैं अपा कई चीजों रो ध्यान जी को अपा रख सका कि भाई फवारा संयंत्र में लंबे बगत ताई सुचारू रूप से चलाउन खातर जरूरी है कि भी बगत सारू समय समय पर देखभाल जी की करा और जरूरत हुए तो भी मरम्मत भी करा। अतः किसान भाई जी की है सुचारू संचालन सारू कई बातों रो ध्यान रख सके। ज्या अपा देखा के चलता चलता फवारा रो नोजल जी को घूमनो बंद हो जाए करे जिके सु पानी रो रिसाव कम हो जाए या बिल्कुल ही बंद हो जाए। फवारो ठीक हूं चारों तरफ घूमे कोनी तो इन समस्या रे समाधान कोई पतले तार या पिनू नोजल रा छिद्र जी का भी अपन साफ करनो चाहिए। नोजल रो घूमनो जी को भी मैं लगड़े स्प्रिंग रे खिंचाव पर निर्भर करा करे। स्प्रिंग खराब होने पर इन्हें अपने बदल देनी चाहिए। नोजल रे किसी भाग पर तेल ग्रीस आदि चिकनाट रो प्रयोग अपने नहीं करना चाहिए। ग्रीस तेल चिकनाट रो प्रयोग करना तो बिर माथे मिट्टी जिमर नोजल ने खराब कर सके। पाइप आ रहे जोड़ा माथे पानी रे रेसा रोकन सारू रबड़ गैसकेट रो प्रयोग जो है वो करना चाहिए। रबड़ गैसकेट रे ढीले पड़ने पर पानी रो रेसा होने लग जाए तो ढीले गैसकेट ने निकाल अपने जिका पाइप रा जोड़ है बटे नए गैसकेट रो प्रयोग जो है वो करना चाहिए। फवारा संयंत्र चलाने पहला अंतिम प्लग ने निकाल पानी से फ्लशिंग कर देनी चाहिए ताकि पाइप रे अंदर कोई मिट्टी कंकड़ या जीव जंतु है तो वह बाहर निकल जाए। कि ई बातों ध्यान रख परा आपा अधिकतम जिको उपलब्ध जल है बिरो अधिकतम उपयोग आपा कर सका और फवारा सिंचाई पद्धति चोखी फसल जी की आपा ले सका।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातःकाल के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गणेश नाथ का गाया लोक भजन।

0: आप सुन रहे थे लोक भजन, कलाकार थे गणेश नाथ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:55 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, अगर हम स्वस्थ हैं तो सभी सुख हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी प्राचीन परंपरा और आधुनिक जीवन दोनों से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आयुष चिकित्सा और स्वास्थ्य

अगर शरीर स्वस्थ है श्रोताओं, तो जीवन की हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है। सवाल है, आयुष क्या है? आयुष शब्द 5 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों का समूह है श्रोताओं। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सभी का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि शरीर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाना है। आयुर्वेद की विशेषता की बात करते हैं श्रोताओं। आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। इसका मूल सिद्धांत है स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का उपचार करना। आयुर्वेद हमें संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और ऋतु के अनुसार जीवन शैली अपनाने की सलाह देता है। वहीं योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आज तनाव, भागदौड़ और अनियमित जीवन शैली के कारण बहुत बीमारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का प्रभावी माध्यम है। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का योग और प्राणायाम करने से तनाव कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर लचीला बनता है, मधुमेह और उक्त रक्तचाप जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। वहीं मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। अब बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की श्रोताओं, तो प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है कि शरीर में स्वयं को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है। शुद्ध पानी, पौष्टिक भोजन, सूरज की रोशनी, स्वच्छ हवा, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा, इन चिकित्सा पद्धतियों का भी भारत में लंबे समय से इस्तेमाल होता आया है। अनेक लोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह से इनका फायदा उठाते हैं। ध्यान रहे, किसी भी चिकित्सा पद्धति की दवा का योग्य और पंजीकृत चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए, खुद से उपचार करना उचित नहीं है। स्वस्थ जीवन के लिए आयुष के सरल मंत्र हैं। आइए कुछ आसान आदतें आयुष के अंतर्गत अपनाने का प्रण करें, जैसे सुबह जल्दी उठें, प्रतिदिन योग और प्राणायाम करें, संतुलित और ताज़ा भोजन खाएं, मौसमी फल और हरी सब्जियां जरूर खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, नशे से दूर रहें, 7 से 8 घंटे की नींद लें, सकारात्मक सोच रखें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, किसी भी बीमारी के लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं, आयुष और आधुनिक चिकित्सा आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कई परिस्थितियों में ये एक दूसरे के पूरक साबित हो सकते हैं। किस स्थिति में कौन सा उपचार उपयुक्त है, इसका निर्णय प्रशिक्षित चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। विशेषकर गंभीर या आपातकालीन स्थितियों में समय पर आधुनिक चिकित्सा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रेरक संदेश के रूप में आज के विषय पर हम बात करें, तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है श्रोताओं। अगर हम अपनी दिनचर्या में योग, संतुलित आहार, स्वच्छता, सकारात्मक सोच को शामिल करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। मिलकर संकल्प लें कि हम अपने परिवार और समाज को स्वस्थ बनाने में योगदान देंगे, आयुष की स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, फिर से याद दिला दें, संतुलित और ताज़ा भोजन करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर योग चिकित्सक से सलाह जरूर लेंगे। कार्यक्रम में लेते हैं एक विराम, बात को बढ़ाते हैं फिर आगे।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आयुष हमें जिन आदतों के बारे में या यूं कहें जिन अच्छी आदतों के बारे में समझाता है बतलाता है उसमें सबसे पहले जो चीज़ शामिल है श्रोताओं वो है सुबह की सैर। जी हाँ, स्वस्थ जीवन के लिए सबसे आसान शुरुआत बस थोड़ा सा समय, दृढ़ संकल्प और स्वस्थ रहने की इच्छा। ये हमें सुबह की सैर के फ़ायदे खुद ब खुद बता देती है। कहा जाता है जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है वो स्वस्थ समृद्ध और बुद्धिमान बनता है। सुबह का समय प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार।

होता है। सूरज की पहली किरण, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, ताजी हवा, हरियाली मन को सुकून देती है, शांति देती है। ऐसे वातावरण में की गई सैर केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी ऊर्जा से भर देती है। अगर सुबह की सैर के प्रमुख फायदों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि यह हृदय को स्वस्थ बनाती है। नियमित रूप से 30 से 45 मिनट की तेज चाल से सैर करने से दिल यानी हृदय मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, उक्त रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। दूसरा फायदा है, वजन नियंत्रित करने में मदद है करती है, यानी अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो सुबह की सैर एक सरल और प्रभावी उपाय है। ये अतिरिक्त कैलोरी जलाने में मदद करती है और शरीर की चर्बी को धीरे धीरे कम करने में सहायक है। तीसरा फायदा है, मधुमेह पर नियंत्रण। जी हाँ, सुबह के नियमित वॉक शरीर में इंसुलिन के बेहतर इस्तेमाल में मदद करती है। इससे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। यही वजह है कि डॉक्टर भी मधुमेह के मरीजों को नियमित सैर की सलाह देते हैं। और ये बात बहुत सारे श्रोता जानते भी हैं कि जो मधुमेह के रोगी निरंतर सुबह की सैर को आदत बना लेते हैं, धीरे धीरे दवाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। चौथे लाभ की बात करें तो वो है मानसिक तनाव से राहत। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, अवसाद आम सी समस्या बन गए हैं। सुबह की खुली हवा में टहलने से शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो मन को प्रसन्न रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पाँचवा फायदा है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। सुबह की अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा में गहरी सांस लेने से फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे पूरे दिन ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। श्रोताओं, और अगर आखिरी ना कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि सुबह की सैर अच्छी नींद का आधार भी है। जो लोग नियमित सुबह की सैर करते हैं उन्हें रात में गहरी और सुकून भरी नींद आने की संभावना ज़्यादा होती है और अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है। तो श्रोताओं, सवाल पैदा होता है, सुबह की सैर करें कैसे? रोज़ एक निश्चित समय पर उठें, शुरुआत में 10 से 15 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर 30 से 45 मिनट करें। हाँ, एक बात और, आरामदायक जूते ज़रूर पहनें, इससे चलने में बहुत मदद मिलती है। चलते वक्त मोबाइल देखने से तो बिल्कुल बचें, प्रकृति के नज़ारों का आनंद लें। अगर मुमकिन हो तो कोई पार्क या हरियाली वाले क्षेत्र पर जाकर सैर करें। सैर के दौरान गहरी और सामान्य सांस लेते रहें। बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सुबह की सैर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। श्रोताओं, तो सुबह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सैर अगर उसके साथ मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। सुबह, सैर और संगीत, तीनों का संगम हो जाए श्रोताओं, तो फिर ये है सोने पे सुहागा।

यह कुछ कर दिखाने की ललक हम में पैदा करती है। कहा जाता है, हुनर हो हाथों में हो मन में विश्वास, रोजगार से ही, बल्कि कहना चाहिए स्वरोजगार से ही होता है जीवन का विकास। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के बारे में। भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर युवाओं को सही शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ श्रोताओं, विकसित भारत का सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ केवल ऊंची ऊंची इमारतें या तेज रफ्तार सड़कें नहीं है। इसका मतलब है हर हाथ को काम मिले, हर परिवार की आय बढ़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने, महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका मिले, गांव और शहर दोनों समान रूप से प्रगति करें। जब देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा। रोजगार केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन का आधार है। आज के समय में रोजगार के बहुत सारे क्षेत्र सामने मौजूद हैं, जैसे डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप और नवाचार। अब नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार भी युवाओं के लिए एक मजबूत विकल्प बन चुका है। कौशल विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है श्रोताओं। आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं देखती बल्कि कौशल भी देखती हैं। अगर किसी युवा को कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजिटल मार्केटिंग या अन्य तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण मिल जाए तो उसके लिए रोजगार के अवसर कई सौगुना बढ़ जाते हैं। डिग्री से पहचान मिलती है, लेकिन कौशल से सम्मान और रोजगार मिलता है। आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं श्रोताओं। वो पापड़, मसाले, अचार, हस्तशिल्प, डेयरी, सिलाई, कढ़ाई, ऑनलाइन उत्पाद बिक्री जैसे कार्यों से परिवार की आय को बढ़ा रही हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो पूरे परिवार का विकास होता है। ग्रामीण भारत की भी एक नई पहचान विश्व के सामने आई है। आज गाँव केवल खेती तक सीमित नहीं है, गाँवों में डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण पर्यटन जैसे अनेक व्यवसाय लोगों की आय बढ़ा रहे हैं। यानी गांव भी अब रोजगार के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। अगर बात करें डिजिटल भारत की तो इसने तो मोबाइल और इंटरनेट के जरिए रोजगार के बहुत सारे नए रास्ते खोल दिए हैं। आज कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ा सकता है, अपना छोटा व्यवसाय चला सकता है, सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, डिजिटल सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकता है। तकनीक आज अवसरों का नया दरवाजा बन चुकी है श्रोताओं। ऐसे में युवाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार या संस्थाओं के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं है। हर युवा को चाहिए कि नई तकनीक सीखे, समय का सदुपयोग करे, छोटे कामों को छोटा ना समझे, लगातार सीखते रहने की आदत को अपनाए, आत्मविश्वास बनाए रखे। याद रखिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। विकसित भारत में नागरिकों की बहुत अहम भूमिका है श्रोताओं। स्थानीय उत्पाद खरीदनी चाहिए हमें, छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करना चाहिए, ईमानदारी और मेहनत को जीवन में आधार बनाना चाहिए। जब समाज, सरकार और नागरिक मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है श्रोताओं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही संदेश आज हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। श्रोताओं, भारत हमें जान से प्यारा है, इसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, पर हमारा भारत के प्रति फर्ज, हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। चलिए कार्यक्रम में रुख करते हैं इस गीत की ओर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, दरअसल अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं तो हम अपने साथ ईमानदारी बरत रहे हैं, और यही ईमानदारी हमें मनोबल देती है, हिम्मत देती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, जिस तरह से स्वास्थ्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, शरीर के प्रति है, मन के प्रति है, आत्मा के प्रति है, उसी तरह से समाज के प्रति भी हैं। और समाज के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जागरूक बने, हमें मालूम हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या गलत है और क्या सही। जब हम गलत और सही में फ़र्क करना जान जाएंगे श्रोताओं, तो भारत के उज्ज्वल भविष्य के सुबह का सपना साकार हो जाएगा और हम अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए सही फैसले ले सकेंगे। तभी हम कामयाब होंगे, तभी भारत कामयाब होगा, तभी हमारी हर सुबह सुहानी होगी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो श्रोताओं, अपना दिल साफ रखें, सादे जीवन को अपनाएं, ताकि जीवन में उच्च विचार स्थापित हो सकें और हम अच्छा सोच सकें, अच्छा बोल सकें, अच्छा बता सकें, अच्छा कर सकें। इसी इरादे के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दें आ गया। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत। आवाज़ें आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ीक की हैं। फिल्म है तीसरी मंजिल। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीतकार हैं RD बर्मन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। आवाज़ें आपने सुनी आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की। एक बार फिर से सुनिए कार्यक्रम में आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए फिल्म जंगली से लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, जिसे शंकर जयकिशन ने दिया है संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में मोहम्मद रफ़ी और साथियों को सुनिए हसरत जयपुरी के लिखे गीत में। शंकर जयकिशन का है संगीत और फिल्म है ब्रह्मचारी।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। फिल्म थी ब्रह्मचारी। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ओपी नैयर के संगीत से सजा अगला गीत। आवाज़ महेंद्र कपूर की है। फिल्म का नाम है किस्मत।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश थी फिल्म लव इन टोक्यो से। आवाज मोहम्मद रफी की थी। हसर जयपुरी ने गीत को लिखा था। शंकर जयकिशन का था संगीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: घर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति

0: fase nuova. अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीयू 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉरपेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी

0: की योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
2: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रिस्टू और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं।

0: फरहतनाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका लोकसत्य

0: को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। अर्जेस बिजनेसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मूव बियॉन्ड ट्रेड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The President invited North Macedonia to join initiatives such as international

0: youth and dispel their fears of any future occurrence of an exam paper leak. The Indian Express, quoting the Prime Minister, says, "Future of youth is beyond politics, calls for foolproof and timely exams." Quoting the Home Ministry, the Times of India states, 50% quota for ex-Agnivis in Central Armed Police Forces, Assam Rifles posts. India soon to get first dengue vaccine for people aged 4 to 60 years, informs the Statesman. An op-ed in the Tribune writes on how India's private sector has entered an exciting phase with Skyroots Aerospace launching Vikram 1 rocket. Condemning the attack on commercial vessel, Russian envoy summoned over killing of four Indians, writes the Economic Times. A headline in Hindustan Times writes, AI to drive planning, audits, fraud detection under Viksit Bharat Jiramji, humans to take final call. And finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 8:30 बज रहे हैं। समय है कार्यक्रम सौरभ का। कार्यक्रम में सुनिए राजस्थानी कहानी। कहानी का नाम है हेली। कहानीकार हैं डॉक्टर चेतन स्वामी।
3: मारो घर एक डेलाण हेली है। चोफेर अरमाय सगले घना फूटरा मांडना कुरूड़ा दादोजी ने हेली सजाउंडो घणो कोड रहा करतो। बारो मानणो हो कि हेली अर घर धीराणी मांडी चूंडी सजी संवरी शणगारोड़ी रही घर री इज्जत है। हेली री पोल सदाई उगाड़ी रेवनी चाहिजे अर चार मिनक बढ़ता निकलता दिशना चाहिजे। हेली माए मिनखारी चबाचोल नहीं रेवे जना क्या री हेली है अर काई सेठ है। दादाजी इन हेली ने घने कोड अर गह के सागे चिणवाई कया करता कि बेटा पोता पड़पोता ताई मजे सु रहा की दिक्कत कोनी आसी। डिगी ढोलानी छात वाला कमरा जिना ने बे आसरा कया करता। गोखे वाला बारी झरोका उन्हाड़े दिना माए दिनुगाले पून बायरो लेवनो होवे तो पग पसार बैठ जाओ। मैं दो भयारो टाबरपणो अठे ही बदीत होयो। मैं अजे 17 रो कोनी होयो और रविंद्र तो ओजो 13 ही साल रो। मारे घर उपरा बजराग तूट्यो। सिलीगुड़ी माए दम घुटने सु मारे जी सारी मौत होएगी। बारी मौत रो रहस्य मैं दो भाई कदे ही जान को नहीं सक्या। पाटरे गोदाम माए मारो दम घुट गयो। लोग के वे पाटरी लूंठी लूंठी गांठा बा माथे आए पड़ी। बे उन दिन गोदाम माए एकला सिलीगुड़ी में मारे पाटरो काम हो। दो अणसंबोड़ा टाबरा रे सिर सु बाप रो आधार खो सीज गयो। बोपार अबे मुनिमा रे हवाले रह गयो जिनने पछे मारा मामोजी संभाल्यो। की दिना पछे हेली में भाड़ेती राखर मारे परिवार ने सिलीगुड़ी जावणो पड़्यो। अणछकरे एने बजराक रे घाले मारे परिवार ने बंगाल रो वासी बनणो पड़्यो। अबे मारो बोपार मामाजी अर मुनिम गुमास्ता माथे टिक्योड़ हो। मामाजी रे समझाया मैं बठे सुई बी कॉम ताई री बढ़ाई करी अर मारे घरू बोपार माए लाग गयो। बठे रही एक मारवाड़ी परिवार माए मारो ब्याह हो गयो। बे लोग कलकत्ते रहा करता। बोपार रे काम खातर नीरी बार मने कलकत्ते जावणो पड़िया करतो। जूट मिलारा घना चक्कर लगावना पड़ता। मारे बोपार री परकत एड़ी ही नैने की भाई रविंद्र री मारे पीढ़िया रेण बोपार माए थोड़ी सीख भी रुचि को नी। वो मने काम माए भिजोड़ो देखतो तो मनी मने इन बोपार री खेचल सु डरन लाग गयो। सेकेंडरी करती वेला ई मन साफ कह दियो भाई जी मैं तो मेडिकल लेन में जासूं आगे साइंस लेसूं। मन्ने कोई आपत्ति

कोनी अर माँ एड़ी बातां घणी जानती ही कोनी। मैं उंडे उछाव माए बदे पोकरता कहो जे तू साइंस लेर डॉक्टर बने तो आपने परिवार खातर घणे गीरबेरी बात हो सी, तने इन खातर जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। मारी बात सुन ने थ्यावस मिलो अर बायोलॉजी सु सीनियर कर्या पछे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम री तैयारी माए जुट गयो। पहले बरस रो मेरिट माए थोड़ो लारे रह गयो। अगले साल उनने MBBS तो नहीं पर BDS खातर टॉप रैंक में प्रवेश मिल गयो। वो थोड़ो रुआसो होयो पर मैं उनरो मन बदावता कहो कि दांताना डॉक्टर काई कम होवे, मारी कमाई या रेपुटेशन किनी फिजिशियन सु कमती कोनी होवे। आपने सिलीगुड़ी में दांताना डॉक्टर शुक्ला साहब ने देखो, बंगलो गाड़ी चेम्बर काई कोनी बाने कने। मारी बात सु उनो थोड़ो हियाव बध्यो, फेरू ही जाने की सोच माए उन्नी गिरगिराटी की प्रगट हुई। उन कहो एक चांस ओजू देख लेऊं काई ठाब के MBBS ही हाथ आए जावे। मैं कहो मैं तो कोनी रोक रहा पर वगत गमावनो ठीक कोनी, तू सोच मेडिकल ली भणाई माए 7-8 साल सोरा सोरा लाग जावे, अरे उनने पछे उनो जमणो 2-3 साल सावड़ सावड़ उन माए लाग जावे। रविंद्र ने मारी बात उचित लागी, उन कलकत्ते सु BDS करनी शुरू कर दी नी। थ्यावस अर मन नी लगन सु उन आपरी डिग्री पूरी करी। मैं उनने PG करन सारू उत्साहित करियो। PG रे छेकड़ले बरस उंडा एक गुरुजी आपरी दांत क्लिनिक माए पार्ट टाइम जॉब खातरी राख लियो। उनने हाथा माए हथोटी अर मन माए आत्मविश्वास जमन लाग्यो। अबे उनने लाग रही हो कि डोंटेस रीरो चुनाव कर उन कोई गलती को नहीं करी। PG कंप्लीट होंडी उडीक माए मैं रविंद्रो ब्याह टालता जाए रहा। संजोग सु जिन बायले ने मैं रविंद्र खातर पसंद करी, भलाई उंडा जी सा कलकत्ते माए व्यापार करे पर मूलत बे मारे ही गांव रा रिवासी है। ब्यावरी बात चलावती वेला सगोजी थोड़ो इन बात उपरा जोड़ दिनो कि ब्याव देश माए करा तो सोराई रेवे। बारो ओ प्रस्ताव माँ ने चोखो लाग्यो। माँ केवन लाग्या 13-14 बरसा सु आपारी इती अच्छी हेली भाड़े त्यारे हवाले है, इन बाने 2-4 महीना खुदरी हेली माए रेवन रो सुख मिलसी। मारी भावना ने मैं क्या टाल सकतो, सोचो आछो ही तो है। इन भाने पुरखारी हेली रे रंग रोगन मरमत आद हो जासी, मारा दो टाबर तो पहली दफा देश जासी अर मारी घरवाली दूजी दफे। 5 बरस पहली धनी लुगाई जयपुर किणी गनायत रे ब्याव माए गया, जना 1.5 दिन खातरे हेली में डब्या। बाड़ी ते तो ओजू रुकने रा नोरा काटता रहा पण मारे पाछा जाऊंडी टिकट ने मैं कैंसिल कोनी करावनी चाहता। रविंद्र ब्यावरी तैयारी रे कारज ब्यावरी तिथसु 2 महीने पहली मैं मान ने ले आए गयो। टाबरा ने इती छुट्टियां नहीं दिलाई सकती, इन खातर ब्याह सु 10 दिन पहली रविंद्र ने ले आवनो कह दियो। माँ आपरी सूझ सु हेलीरु एक एक काम घनी कुशलाई सु करवायो, जिन सु एक करबा नूई जेड़ी होएगी। खुदरी हेली उपरा मैं मुग्ध हो गयो। इन माए तो कितरा ही गनायता ने ठहराया जा सके सोरा सोरा। होली रे 4 दिन पहली ब्यावरी तिथि, 10 दिन पहली रविंद्र टाबर अर धनियानी रे आया अर की नेड़ला रिश्तेदार री आवाज आई सु हेली माए टाबर थके वाली चेल पेल बावड़गी कि मैं मारा भाईला ने तेड़ा जिना सु मैं 13-14 बरसा पछे मिल रहे हो। मारे टाबरा अर घरवाली ने तो इन खुले माहौल माए घणो आछो लाग रहे हो, माने सिलीगुड़ी रो मकान घणो छोटो लाग रहे हो। टाबर हेली रे चोक लामी चोड़ी छात अर हेली सु लागते नोरे माए धमा चोकड़ी मचावता थक नहीं रहा हा। टाबरा ने इतना खुश देख सिंजा मां सा बोलिया, नरेंद्र आ टाबरा ने अबे बठे सिलीगुड़ी में किया आवड़सी, साचे ही बीते छोटे मकान माए टाबर कठे रमे। मैं सोच में सो पड़ गयो, माँ ठीक के वे पण जावनो तो बठे ही पड़सी, बोपार ने किया छोड़ो जा सके। मैं नैनो सो उथलो दिनो कहीं करा मां सा, बडेरा जठे बांध दिया जावनो तो बठे ही पड़सी, आपा बाणिया री प्रदेश बिना किया पार पड़े, ए हेल्या प्रदेश री कमाई सुई बनोड़ी है। माँ एक निस्खारो सो नाख्यो। ब्यावरा दिन नेड़ा आवता आवता हेली में ओजू चेल पेल बदगी। रविंद्र ने देसी रीत रिवाजा सागे ब्याव करावनो घणो चोखो लाग्यो। उंडी पढ़ने तो इनी कस्बे माए नैनी मोटी होई, जना उन खातर की नुओ कोनी हो। ब्याव रमा जमा धूमधाम सु होयो। ब्याव रे 4 दिना पछे होली रो त्योहार आए गयो। होली सु पेड़ रात हेली में धमाल अर चंगा नो कार्यक्रम राखी जो। टाबरा खातर तो ओ सावी नुओ अनुभव हो, बाने आ होली आखी उम्र चेते रहसी। होली रे 1 हफ्ते पछे महासगला ने पाछो सिलीगुड़ी बावड़ न हो, इनी बिचाले लॉकडाउन री घोषणा होण सु माडे माने अठे टिकणो पड़ियो। मां सार टाबर तो घणा राजी होया। 1-2 दिन तो चिंता होई लारे काम खोटी होई रहियो, पण इन रुकणे माए किणी रो काई जोर,

0: घरमा ही रेवणो फिर मैं सगला हेलीरा सगला चित्रामा माथे शोध करन लाग्या। चित्राम है फूट रहा है बस इनसू आगे आ खातर बेसी की कोनी सोचो कदई हेलीरी इन पेंटिंग ने इतरे गोरसू देखी कोनी। तीन चार दिना पछे रविंद्र अचंबो करता कहो भाई जी मने ए चित्राम मांडन वाले चित्रामकार रो नाम लाद गयो। लिख्योड़ो है उस्मान चूनगर एक मुसलमान चित्रामकार हिंदू पौराणिक अवतारा ना कितरा रूपाला चित्राम मांड्या है उनने आपारी माइथोलॉजी री कितनी ऊंडी जानकारी रही होसी। मैं हंसता थका कहो इन ठाड़प में आपाने अपनी हेलीमाए और घनी चीजा री जानकारी मिलसी। रविंद्र मारे नेड़े आवता कहो भाई साहब मने आपनी इन हेली सू हेत हो गयो। मैं एक दो दिना सू सोच रहे क्यों नहीं मैं मारी डेंटल क्लिनिक आपने इन्हीं कस्बे माए खोल लेऊं रोज सिंजा रो सिंजा घरे इन हेली माए आए जाऊं मारे मुंडे चिड़केरी मुलक आएगी और माँ तो आपरे छोटकी बेटे रे इन निर्णय सु घनी राजी हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, प्रस्तुत है देशभक्ति सहगान।

आप सुन रहे थे देशभक्ति सहगान, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। जी हाँ, समय मिला लें, स्टूडियो की घड़ी सुबह के 8:45 बजा रही है। समय है सुगम संगीत का, कलाकार हैं आबिदा परवीन।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी आबदा परवीन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है। आकाशवाणी जयपुर से प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 28% की कमी दर्ज की गई। और प्रदेश में फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बारिश, आगामी 4 से 5 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी करेंगे। सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का कॉरिडोर 41 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित है। ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी से राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जरिए पूरी की जाएगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 4 जुलाई को किया था। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी। इनमें 105 माइनिंग लीज और 30 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी शामिल है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 3.5 महीनों में 14 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की है, जबकि पूरे साल में 55 ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का कहना है कि ई नीलामी से वैध खनन को बढ़ावा मिला है और निवेश, रोजगार तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गर्भवती महिला की ट्रैकिंग कर रहा है। इस संबंध में कल जयपुर में स्वास्थ्य भवन में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किए

0: गए हैं और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। जुलाई महीने की प्रस्तावित प्रसूति सूची में 7,000 से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवतियां चिन्हित हुई हैं। इन महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक उपचार और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: सीवियर एनीमिया केसेस को नॉर्मल केसेस में, लो एनीमिया केसेस में क्या क्या मेडिकल इंटरवेंशन से पॉसिबल है, एसएमएस फैकल्टी भी था। जुलाई के प्रेगनेंसीज जो ड्यू है महिलाओं की, उनके ऊपर विशेष फोकस है और हर महिला के साथ जहां जहां रेफरल हॉस्पिटल्स का मैपिंग भी कर दिया गया है और बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। 54,000 आशा, 17,000 एएनएम्स, सारे मेडिकल कॉलेजेस, सीएचसीज, पीएचसीज इस बैठक में 4 दिन से मेरे साथ बैठे थे और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा है और सभी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कंटिन्यूम केयर के।
0: प्रदेश के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण सेवा फॉलो अप कैंप शुरू हो गए हैं। इन शिविरों में आमजन के लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। सवाई माधोपुर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पट्टे, नामांतरण, पेंशन, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण सहित विभिन्न कार्यों का लाभ लिया। नगर परिषद प्रशासन ने बताया कि राजकीय अवकाश को छोड़कर ये शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। वहीं पाली में भी फॉलो अप शिविरों के माध्यम से आमजन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में ऐसे मामलों में लगभग 28% की कमी आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में इन आंकड़ों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को SC/ST वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई, संवेदनशील मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज लगभग 68% मामलों का निस्तारण अब 60 दिन के अंदर किया जा रहा है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए करोड़ों रुपए के साइबर घोटाले के मामले में डीडवाना पुलिस मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी इमरान अली से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसका अंतर्राज्यीय गिरोह राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकारी छात्रवृत्ति और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर साइबर फर्जीवाड़ा कर चुका है। ये गिरोह दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित सरकारी पोर्टलों पर फर्जी लाभार्थी तैयार कर योजनाओं का दुरुपयोग भी करता था।
2: इमरान नाम का व्यक्ति है जो इनका मास्टरमाइंड है। ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड करके और सभी प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं, चाहे ये अल्पसंख्यक हो या दूसरी तरीके की है, उसमें ऑनलाइन सेम लगा के और फ्रॉड करके और वो छात्रवृत्ति का पैसा उठा रहे थे। तो इसमें इमरान को भी हमने गिरफ्तार किया है। पूर्व में 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें जितने भी अपराधी और इन्वॉल्व हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सबको गिरफ्तार करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
0: राज्य में साइबर ठगी की रकम तुरंत रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन और बैंकों के बीच समन्वय और तेज किया जाएगा। इसे लेकर जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की साइबर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि शिकायत मिलने और बैंक खाते पर रोक लगाने के बीच का समय न्यूनतम होना चाहिए ताकि ठगी की राशि समय रहते रोकी जा सके। उन्होंने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को 1930 ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली समझने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने संदिग्ध बैंक खातों की निगरानी बढ़ाने और बैंकों तथा साइबर पुलिस के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में 190 चिन्हित बैंक शाखाओं पर AI आधारित निगरानी व्यवस्था करने पर भी

0: सहमति बनी। प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बरसात हो रही है। अगले 4 से 5 दिन तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आज भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान पिलानी में 36 मिलीमीटर, कोटा में 28.6 और चूरू में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। पाली में कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है। बारां जिले में कल मूसलाधार बरसात हुई, जिससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली।
1: लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को बारां जिला मुख्यालय समेत संपूर्ण जिले में जोरदार बारिश हुई। छिपाबड़ो क्षेत्र में सुबह से शाम 4 बजे तक 5 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते अंधेरी नदी में उफान आ गया। वहीं शाहबाद क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से सिरसा नदी भी उफान पर रही। अच्छी बारिश होने से खेतों में सूखती फसलों को भी जीवन दान मिल गया, तो वहीं तापमान में गिरावट होने से आम जन को भी भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। प्रधान खनिजों के 141 ब्लॉकों की ई नीलामी के साथ राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराधों में पिछले 2 वर्षों में 28% की कमी दर्ज की गई। और प्रदेश में फिर से सक्रिय हुए मॉनसून के कारण कई स्थानों पर बारिश, आगामी 4 से 5 दिनों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 9:10 हो रहे हैं। समय हो चला है लोक संगीत का। कलाकार हैं वीरेंद्र शर्मा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम। लोक संगीत में आज आपने सुना वीरेंद्र शर्मा के गाए लोकगीतों को। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीईआरटी का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबेल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?

0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
1: जी
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है, और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
1: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी
1: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को, यानी हॉर्नबिल पक्षी को, साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
1: जी यही वजह है कि नगा परंपराओं में, विशेषकर सर के आभूषणों में, हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओ, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं,
1: जी
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
1: जी
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है
1: जी
0: जिसे मोरुंग कहते हैं।
1: जी
0: ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
1: जी यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
1: जी
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
1: जी
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
1: जी
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800044559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है, और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो,

0: सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
0: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु, दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
0: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
0: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
0: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
0: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
0: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
0: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी।

0: सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी।

0: साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
1: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
1: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के। लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे पिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
2: नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी, बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ, अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे।

0: बैठे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
3: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है। सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
3: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
3: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
3: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
3: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
3: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
3: नहीं।
1: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
3: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
3: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
3: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
3: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
3: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
3: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
3: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
4: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।

0: अरे बेटा, ये
1: जी
0: तुम्हारा
1: मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं, मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो? वो तो मैं बस,
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूं, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूं मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा? और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
1: आजा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
4: नमस्कार।
5: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत में नई फिल्मों से गीत। लीजिए सुनिए फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से अरिजीत सिंह की आवाज़ में पहला गीत। मिथुन ने संगीत दिया है, बोल हैं मनोज मुंतशिर के।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीत। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एयरलिफ्ट से कुमार का लिखा गीत, जिसे अमाल मलिक ने दिया है संगीत।

0: बदल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में ये आवाज़ आपने सुनी। आवाज़ थी फरहान अख्तर की। फिल्म थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, शंकर एहसान और लॉय का था संगीत।

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

0: मधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: कार्यक्रम में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से सुनिए अगला गीत। उस्ताद सुल्तान खां, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की हैं आवाज़ें। महबूब ने गीत को लिखा है, संगीत है इस्माइल दरबार का।

0: ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सचिन टंडन की आवाज में फिल्म यारियां से अगला गीत।

ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था कल हो ना हो। आवाज़ सोनू निगम की थी, शंकर एहसान और लॉय ने दिया था संगीत, बोल थे जावेद अख्तर के। नई फिल्मों से कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला गीत। साथ ही आवाज़ अंतरा मित्रा की आप सुनेंगे। मनोज यादव ने गीत को लिखा है, अमाल मलिक का है संगीत और फिल्म है अजहर।

नई फिल्मों से कार्यक्रम में ये आवाज थी अरिजीत सिंह की फिल्म थी सनम रे। मनोज मुंतशिर ने गीत को लिखा था, संगीत था अमाल मलिक का। फिल्म गीतों के सफर का अंतिम गीत लीजिए सुनिए, फिल्म है दे दे प्यार दे। आवाज अरमाल मलिक की है, कुणाल वर्मा ने गीत को लिखा है, संगीतकार हैं अमाल मलिक।

अरमान मलिक की आवाज में गाए दीदे प्यार दे फिल्म के संगीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत।

भूले बिसरे गीतों में लीजिए सुनिए पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अनाड़े फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना जमीर फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था सपन चक्रवर्ती ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सफ़र। इंदिवर के बोलों को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: मुकेश की आवाज में सफर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इंदिवर के लिखे बोलों को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यासा। साहिर लुधियानवी ने लिखा है गीत को, संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।
1: मारे।

किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। आकाशवाणी बीकानेर के डुलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आशियाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

खूबसूरत फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल थे गुलजार के, संगीत था आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज़ में, उनका साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है काला पत्थर। गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के, संगीत है राजेश रोशन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना काला पत्थर फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था राजेश रोशन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की ही आवाज में। फिल्म का नाम है राजकुमार। गीत के बोल है हसरत। जयपुरी के संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना राजकुमार फिल्म का ये गीत। गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है डोली। गीत के बोल है राजेंद्र कृष्ण के, संगीत है रवि का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपकी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था आर डी बर्मन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में अगला गीत आशा भोंसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लोफर। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: में गाए लोफर फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति CP राधाकृष्णन ने सिक्किम में NHPC की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉ जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स

0: विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम की 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर और रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी इसी सभा में 12:40, दोपहर 2:30, शाम 6:05, रात्रि 8:15 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से।

महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे वर्किंग वुमन के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण, हस्तशिल्प को बढ़ावा, बारिश के मौसम में पेट का इन्फेक्शन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता, संस्कारों की शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षा। वार्ताकार होंगी श्रीमती स्नेहलता शर्मा। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा इंटरनेट और ज्ञानार्जन। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी, धूम्रपान फैशन नहीं है, गुलाबी शहर जयपुर, ऊर्जा और उसके स्रोत, विटामिन और पोषण जैसे विषयों पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खरपतवार नियंत्रण से लाभ, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, प्रधानमंत्री सौर घर योजना, अतिवृष्टि बाढ़ के समय पशुधन प्रबंधन। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

शाम 7:45 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं चंचल कुमारी की आवाज में।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला लोकगीत बद्री व्यास और मलया दास की आवाजों में।

भावना शर्मा की आवाज में आपने सुना ये लोकगीत। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए सागर मल भाटी की आवाज में।

सागरवाल पार्टी की आवाज में आपने सुना ये लोकगीत। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में अगला लोकगीत रागिनी की आवाज में। उनका साथ दिया है राकेश काला ने।

रागिनी और राकेश कला की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

99.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिनके 12:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभय जोधपुरकर की आवाज में। फिल्म का नाम है जीरो। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है अजय अतुल का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है मन, गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है संजीव दर्शन का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था संजीव दर्शन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के की आवाज में। फिल्म का नाम है जिंदगी तेरे नाम। गीत को लिखा है जलीश शेरवानी ने, संगीत है साजिद वाजिद का।

केके की आवाज में आपने सुना जिंदगी तेरे नाम फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था जलीस शेरवानी ने, संगीत था साजिद वाजिद का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में। फिल्म का नाम है अंधाधुन। गीत को लिखा है जयदीप सहनी ने, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: अमित त्रिवेदी की आवाज में गाए अंधाधुन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं

0: कृतिका गुप्ता। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना का आज भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। ये परियोजना प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित है। लगभग 41 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 36 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% वित्तीय भागीदारी से राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। प्रदेश के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों के नए नामों को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में जयपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम बलिदानी योद्धा मेजर विकास भांबू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा गंगा सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली मेडिकल कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज और अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अजमेर के कोटड़ा स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय और बारा के छबड़ा स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए नामकरण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। श्रीगंगानगर में अंगदान महादान जागरूकता अभियान के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय में आज अंगदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और राजकीय सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर आम जन को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। अभियान के अंतर्गत अंगदान विषय पर पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिताएं भी रखी गई। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अंगदान को मानव सेवा और जीवन दान का प्रभावी माध्यम बताया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना के तहत भरतपुर में 1311 पुराने वाहनों की पहचान की गई है। इनमें 1011 ट्रक और 300 बसें शामिल हैं। योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पर BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत वाहन मालिक स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराने वाहन का निस्तारण कर नया अनुपालक वाहन खरीदने पर विभिन्न वित्तीय रियायतों का लाभ ले सकेंगे। इनमें नए वाहन पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट और पुराने वाहन के प्रतिस्थापन पर 50% तक कर छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले 9 महीनों में विभिन्न राज्यों से 80 इनामी मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों पर कुल 21,28,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई राजस्थान सहित 8 राज्यों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई। इनमें कई ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जो वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि अब नार्को 25 सूची में शामिल बड़े तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। स्क्वैश में भारत की अनाहत शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत ने राउंड ऑफ 32 में हांगकांग की पुई यिन चोलेलो को सीधे गेमों में हराया। अनाहत का अगला मुकाबला मलेशिया की डॉयस ये सानली से होगा। आर्य वीर दीवान ने राउंड ऑफ 32 में दक्षिण अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को सीधे गेमों में आसानी से हराया और अब उनका अगला मुकाबला अमेरिका के यासिन शलाबी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम।

0: सुबह की पहली किरण जब धरती को सहलाती है, हर तरफ नई उम्मीद और नई मुस्कान बिखर जाती है।
1: जी हाँ बहनों, धरती की इसी अनुपम छटा के साथ हम भी आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत लेकर हाजिर हैं। तो स्वीकार कीजिए किरण शर्मा और
0: अनुपम पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए बहनों, कैसी हैं आप? आशा करती हूँ अच्छी होंगी, खुश होंगी, है ना?
0: इस बात पर मैं कहूँगी किरण कि खुश होने का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही रास्ता है।
1: बात तो सही है अनुपम, खुश रहने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ तलाश कर हम स्वयं खुश रहने का रास्ता बना सकते हैं।
0: हम हर सुबह एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह का सुहाना सा वातावरण, ठंडी हवा के झोंके, पक्षियों का कलरव और उगते सूरज की लालिमा, ये सारी चीजें मन को ताजगी और खुशी का एहसास कराती हैं, है ना?
1: हाँ, लेकिन तब जब हम इन चीजों को महसूस करें, इसके लिए थोड़ा सा समय निकालें, जल्दी उठें, घूमने जाएं, आसपास के पार्क में बैठकर थोड़ा समय बिताएं, तो इस खुशी को हम जरूर महसूस कर पाएंगे।
0: बिल्कुल किरण, मैंने देखा है कि कई महिलाएं सुबह उठते ही अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लेती हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती, और फिर दिन भर चिड़चिड़ापन, थकान और गुस्सा उन पर हावी हुआ रहता है।
1: हाँ अनुपम, आप सही कह रही हो, इससे ना तो वो किसी काम को ठीक से पूरा कर पाती है और ना ही अपने परिवार और बच्चों का पूरा समय दे पाती है, और शारीरिक रूप से भी कमजोर और अस्वस्थ महसूस करती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो किरण, क्योंकि बहनों हम महिलाएं तो परिवार की धुरी होती हैं, और हम बीमार पड़ गई तो घर को कैसे संभालेंगे?
1: बिल्कुल बहनों, घर के काम के साथ साथ खुद के लिए भी समय जरूर निकालें, अपनी पसंद के कार्य और शौक जरूर पूरे करें, परिवार के साथ साथ खुद के खाने पीने का भी ध्यान रखें।
0: फिर देखिए, इन छोटी छोटी चीजों से ही आप सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे,
1: और फिर देखिए खुशियाँ कैसे आपके दिल को दस्तक देती है।
0: जैसे पक्षियों का कलरव प्रकृति का प्यारा संगीत बन जाता है, उगता हुआ सूरज हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं मुस्कान, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा और इस प्यारे से गीत के साथ।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: किरण, अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आज की हर कामकाजी महिला के जीवन से जुड़ा है, वर्क लाइफ बैलेंस, यानी काम और निजी जीवन के बीच संतुलन।
2: जी हाँ बहनों, आज के दौर में सभी व्यस्त हैं, खासकर महिलाएं घर और कार्यस्थल में दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभा रही है। वे परिवार की देखभाल भी करती है और अपने सपनों को साकार भी करती है।
1: लेकिन किरण, लगातार काम का दबाव और अनेक जिम्मेदारी और समय की कमी मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बन जाती है। ऐसे में काम का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे घर के जो भी सदस्य है वो हमारी काम में मदद करें, इसके लिए हमें, जैसे बच्चे हैं ना, तो उनको शुरू से ही आदत डालनी होगी। बच्चे स्कूल से आए हैं, अपना बैग व्यवस्थित जगह पे रखें, अपनी किताबें समेट के रखें, अपने जूते सही जगह पे रखें,
2: है ना। कहने के मतलब छोटे छोटे काम है वो खुद करें,
1: तभी तो हम अपने काम के साथ साथ परिवार, स्वास्थ्य और स्वयं के लिए समय निकाल पाएंगे।
2: और कई बार होता है ना अनुपम, की हम अपने बुजुर्गों को उनके मतलब ख्याल रखने के हिसाब से काम करने ही कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग है ना वो भी चाहते हैं कि घर में हमारी अहमियत हो, वो भी कुछ ऐसा काम करे जिससे लगे कि हमें उनकी जरूरत है। तो छोटे छोटे काम है उनको जरूर कहें कि माताजी आप कर देंगी क्या, तो उनको भी अच्छा लगेगा,
1: उनको अच्छा लगेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, है ना।
2: तो बच्चे, बुजुर्ग और जो बड़े हैं घर के, यानी जो व्यक्ति है, वो भी अपने जो कार्य है उसमें हमारा सहयोग दे सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। और अनुपम, दिन भर की व्यस्तता में कुछ पल अपने लिए जरूर रखें, यानी अगर वो हमारा कार्य बंटवा लेंगे तो हमारे लिए पल लिए, है ना, अपने लिए जरूर निकल ही आएंगे। और नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पूरी नींद और अपनी पसंद का कोई शौक जरूर पूरा करें, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या पेंटिंग करना हमारे तनाव को कम करने में मदद करते हैं।
1: और किरण, इसके लिए कामकाजी महिलाओं को प्लानिंग के साथ साथ काम करना आना चाहिए, अपने प्रत्येक कार्य की योजना बनाकर चलें।
2: बिल्कुल।
1: अब अगर वो सुबह जल्दी काम पे जाती हैं, सुबह टाइम कम है, तो रात को ही अपना सारा कि क्या पहन के जाना है, क्या बनाना है, ये सारी प्लानिंग दिमाग में पहले से सेट करके रखे, तो इससे आपके समय की बचत होगी। और घर हो या दफ्तर, आप किसी भी कार्य में मदद लेने से ना हिचके चाहे, घर के कार्यों में पति या अन्य सदस्यों की मदद ले सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग लेना भी जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदारियों को समझदारी से मिलकर निभाना ही तो सच्ची सफलता है।
2: बिल्कुल अनुपम, एक संतुलित जीवन न केवल कार्य क्षमता बढ़ाता है बल्कि परिवार में खुशियां और रिश्तों में अपनापन भी बनाए रखता है। और जब महिला स्वस्थ, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरपूर होती है तब उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर दिखाई पड़ता है।
1: और एक बात और बहनों, घर हो या ऑफिस, दोनों जगह सबसे अहम चीज होती है हमारी डाइट, जिसे हम काम के चलते नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समय पर संतुलित भोजन लेना है, तभी तो आप स्वस्थ रहेंगी और अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगी।
2: और बहनों, फिलहाल काम की चिंता छोड़कर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना।

0: किरण, हम अपने बच्चों को शिक्षा तो देते ही हैं, साथ ही उसे संस्कारों की शिक्षा देना भी जरूरी है। अगर हम बच्चे को संस्कारों की शिक्षा देंगे तभी तो वो हमारी संस्कृति का संरक्षण कर पाएंगे।
1: हाँ अनुपम, माता पिता को तो बच्चे के लिए समय निकालना ही चाहिए, साथ ही हमारे घर की धरोहर यानी हमारे बुजुर्ग जो अनुभव, ज्ञान, संस्कार और परंपराओं के संरक्षक होते हैं, उनके सानिध्य में बच्चों को जरूर रखना चाहिए, जिससे संस्कृति का संरक्षण स्वतः ही हो जाएगा। इसी विषय पर क्यों नहीं सुनवा दे अपनी बहनों को वार्ता, जिसका विषय भी यही है कि संस्कारों की शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण। वार्ताकार है श्रीमती स्नेहलता शर्मा।
2: संस्कार वस्तुतः मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के परिचायक हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संस्कारों का असीम महत्व होता है। महर्षि आश्वलायन ने कहा, संस्कार हिता ये तो तेषां जन्म निरर्थकम्। अर्थात जिस मनुष्य को संस्कार प्राप्त नहीं हो सके उसका जन्म निरर्थक है। संस्कार शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान जीता है। महर्षि अरविंद ने मनुष्य को दो तिहाई पशु प्रवृत्तियों को लेकर आया बताया है। उन्होंने अपने मत की व्याख्या की है कि यह मानव का सौभाग्य है कि वह कर्म योनि में आया है, ताकि कर्म करके वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को संस्कारित कर सके। चरित्र निर्माण का मूलाधार संस्कार ही है। जिस प्रकार के संस्कारों का हम संचय करते हैं उसी के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता चला जाता है। निसंदेह संस्कार मानव जीवन को हर सोपान पर शक्ति प्रदान करने वाला ऐसा सहज टॉनिक है जिसमें व्यक्तित्व निर्माण की असीम संभावनाएं स्वतः फलती फूलती रहती है। संस्कार और संस्कृति परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों ही मानवीय व्यवहार के आंतरिक व बाह्य पक्षों से संबद्ध है, परिमार्जक और परिशोधन भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति सदैव संस्कारों और व्यक्ति के सदाचारों से अनुप्राणित है। यदि व्यक्तियों के संस्कारों में विकार दिखाई दे तो संस्कृति भी अब संस्कृति में परिवर्तित होने लगती है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कार और संस्कृति दोनों में पर्याप्त समानता है। संस्कार शब्द संस्कृत भाषा की क्री धातु से निष्पन्न है। इसमें सम उपसर्ग का योग साथ ही घञ प्रत्यय का योग है। अतः संस्कार शब्द का अर्थ सुधारना, सज्जित करना, मांझ कर चमकाना आदि है। इसी से संबद्ध शब्द संस्कृत है, जो सम उपसर्ग क्री धातु से कट प्रत्यय के साथ जुड़कर बना है। इसका अर्थ सुधारा हुआ, सुसज्जित किया हुआ या मांझ कर संभाला हुआ होता है। यह संस्कृत विशेषण रूप है जिसका नाम रूप संस्कृति है। मानवीय जीवन में संस्कारों का विधान करने से शुचिता, पवित्रता, सदाशयता तथा सात्विक गुणों की सहज प्रतिष्ठा हो जाती है। परंतु पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में मानव तीव्र गति से पतनोन्मुख होता हुआ स्वयं को संस्कार विहीन प्रमाणित कर रहा है। किंतु इस दुष्प्रभाव से संस्कृति अक्षुण रह सकेगी, यह कब तक व किस प्रकार संभव हो सकेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान ने हमें पशु प्रवृत्तियों का गुलाम बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने तथा अनैतिक आचरण करने के लिए छूट दे दी है, पर अंकुश लगाने एवं जीवन को सही ढंग से जीने की शिक्षा तो भारतीय संस्कृति से ही आती है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में कर्तव्य परायणता, सहिष्णुता, उदारता आदि मानवीय मूल्य हैं।

आवश्यकता है तो बस थोड़े से समन्वयन की, सुसंस्कार जनित अभ्यास की। हमें भूख लगती है, हम भोजन खाते हैं, यह प्राणी की प्रवृत्ति है। दूसरों का भोजन छीन कर खाते हैं, यह दुष्प्रवृत्ति या विकृति है। दूसरे भूखे को पहले खिलाकर तब खुद खाते हैं, यह सुसंस्कारों से जनित संस्कृति है। संस्कार और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संस्कार हमारे सद्व्यवहार के प्रेरक हैं, यही आचरण बनकर सामान्य रूप से संस्कृति कहलाता है। संस्कार मानव जीवन को परिमार्जित करने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों का परिशोधन करने वाली आध्यात्मिक योजना है। संस्कारों का पुंज ही चरित्र है। सच्चरित्र ही मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाता है। चरित्रहीन का जीवन तो व्यर्थ ही समझिए। किसी ने ठीक ही कहा है, ऊंचे गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरी से गिरे बिगड़े जन्म हजार। संस्कारों का प्रवाह ऊपर से नीचे अर्थात बड़ों से छोटों की ओर बना रहता है। बच्चे उपदेश को भी कभी नहीं मानते, वे अनुकरण करके सीखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला घर है। घर में माता ही प्रथम गुरु है। इस यथार्थ को समझने के लिए एक किस्सा है। एक बच्चा था, स्कूल में अन्य बच्चों के साथ पढ़ता था। जब पढ़कर घर वापस आता तो कोई न कोई वस्तु चुरा कर ले जाता। माँ हर बार उसकी पीठ थपथपाती। माँ की प्रशंसा उसे प्रेरणा देती। कालांतर में वह बालक युवा हो गया, नामी चोर बन गया। आए दिन अपराध करने लगा, जघन्य अपराध। एक बार पकड़ा गया, न्यायालय ने उसके अपराध की सजा फांसी सुनाई। फांसी देने का वक्त आया, रीति नीति के अनुसार उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने मरने से पहले माँ से मिलना चाहा। माँ को बुलाया गया, बेटे के पास ले जाया गया। माँ ने बेटी की बात सुनने के लिए अपने कान उधर किए। बेटे ने जोर लगाकर गुस्से से उसके कान को काट लिया। खून की धारा बहने लगी। पूछने पर बेटे ने बताया, मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मेरी माँ ही जिम्मेदार है। सच तो यही है कि माँ प्रोत्साहन नहीं देती तो बेटा गलत हरकत करता ही नहीं। उसे अच्छे संस्कारों से संस्कारित करती तो यह दिन बेटे को देखना न पड़ता। हमें बच्चों को संस्कार प्रदान करने के तीन चार माध्यमों को सशक्त मानना चाहिए। पारिवारिक परिवेश, शिक्षा, स्वाध्याय, सत्संग। पारिवारिक परिवेश में बालक अनुकरण के माध्यम से बड़ों का सम्मान करना, कर्तव्यों का पालन करना, रहने, कहने, बोलने व सहन करने की मर्यादा का पालन स्वतः सीख जाता है। यदि परिवार में कथनी और करनी में अभेद है तो बच्चे को भी वैसा ही संस्कार मिलेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। अर्थात कथनी को करनी में बदलने की प्रवृत्ति राम ने रघुकुल की रीति से ही अपनाई। शिक्षा तो संस्कारों की जननी है। हितोपदेश में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम्, विनयाध्याति पात्रताम, पात्रतात् धनम् आप्नोति, जनात् धर्मः ततः सुखम्। अर्थात विद्या विनय देती है। विनय से व्यक्ति पात्रता प्राप्त करता है और पात्रता ही सच्ची संपत्ति है, जिससे व्यक्ति धर्म अधर्म होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। स्वाध्याय भी संस्कारों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्साहित्य बच्चों को सुसंस्कार की ओर प्रेरित करता है। स्वाध्याय से सदाचरण में वृद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कारों के निर्माण में अंतिम भूमिका सत्संग की है। महात्मा कबीर ने इसके महत्व को बताया है, एक घड़ी, आधी में पुनियात, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसा कोई संत महात्मा, कवि, साहित्यकार, व्यक्ति नहीं है जिसने सत्संग को नकार कर व्यक्ति को स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दी हो। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में चारित्रिक हीनता तथा संस्कारहीनता राष्ट्र की मृत्यु का कारण होते हैं। संस्कारों से ही चरित्र बनता है। संस्कारित बच्चा ही बड़ा होकर राष्ट्र और परिवार के विकास में सहायक होता है। सुसंस्कार रूपी जल से सिंचित बालक बड़ा होकर अपनी संस्कृति के शाश्वत स्वर आत्मवत सर्वभूतेषु से संपूर्ण सृष्टि को

0: जायमान करने की क्षमता रखता है, इसलिए सुसंस्कारित व्यक्ति के द्वारा ही संस्कृति की संरक्षा संभव है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत।
1: तो बहनों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, जिसका विषय था संस्कारों की शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण। वार्ताकार थी श्रीमती स्नेहलता शर्मा। इसके साथ ही अब समय हो चला है मनोरंजन का, तो कीजिए अपना मनोरंजन इस गीत के साथ।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: अनुपम, हम सखियां जब बैठकर एक दूसरे से बात करती हैं तो उसमें एक बात का जिक्र जरूर होता है, वो है भूलने की समस्या का।
3: किरण, तीन में से एक सखी की यही समस्या रहती है कि हम आजकल चीजों को, बातों को या किसी तारीख या नाम को भूल जाते हैं।
2: बिल्कुल अनुपम, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोरोना का प्रभाव हो सकता है या बदलती जीवन शैली या फिर मोबाइल का बढ़ता प्रयोग भी हो सकता है। पहले हम किसी की जन्म तारीख को, किसी के मोबाइल नंबर को कैसे याद करके रखते थे ना, कि आज वो चीज बिल्कुल खत्म सी हो गई है और हम बिल्कुल मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं।
3: बिल्कुल सही कह रही हो किरण, हमारी याददाश्त कम होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है, साथ ही खान पान भी इसका कारण है। जैसे मैदे से बने हुए जंक फूड भी आंतरिक विकार उत्पन्न कर देते हैं, है ना?
2: पर कई बार हम देखते हैं कि भूलने की समस्या सामान्य से अधिक होती जा रही है, यानी हर बात भूल जाते हैं, किसी के नाम को, बात को। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि लक्षण कहीं अल्जाइमर के तो नहीं। अक्सर ये लक्षण 60 साल की उम्र के बाद देखने को मिलते हैं।
3: बिल्कुल किरण, इसमें भी याददाश्त जो है ना वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है और भ्रम की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति को पहले वाली सारी बातें तो याद रहती है, लेकिन वर्तमान में जो भी बातचीत करता है उसको भूलने लगता है। तो ये समस्या तंत्रिका संबंधी समस्या कहलाती है और दवा और जागरूकता इसके लिए दोनों ही आवश्यक है।
2: बिल्कुल सही, वैसे भी आज यानी 22 जुलाई को है विश्व मस्तिष्क दिवस। इसकी शुरुआत 2014 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है मस्तिष्क के स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल विकारों और जैसे अल्जाइमर है, स्ट्रोक है, मिर्गी, माइग्रेन आदि से बचाव और वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है।
3: हाँ बहनों, दवा के साथ साथ जरूरी है पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक व्यायाम, संतुलित आहार और मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए पहेली या पजल आदि भी खेलना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो सखियों अब से आप शुरू हो जाइए अपनी सखियों के साथ पजल और पहेली वाले गेम खेलने पर। हाँ, अभी अपने मस्तिष्क को तरोताजा रखने के लिए क्यों नहीं चलते हैं संगीत की दुनिया में।
3: सुनते हैं ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अनुपम, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पीहर गई हुई थी, तो मेरे भतीजे ने मुझे अपनी ड्राइंग कॉपी दिखाई।
3: अच्छा।
2: कि देखो बुआ, मैंने ड्राइंग बनाई है। मैंने देखा उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाई हुई थी, पर मुझे ये देख के ज्यादा अच्छा लगा कि उसमें कॉपी में सबसे पहले ड्राइंग बनाई थी तिरंगे की।
3: किरण, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कि कहीं ना कहीं बच्चे में देशभक्ति की भावना का विकास हो रहा है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ हमारा राष्ट्रध्वज नहीं बल्कि हमारी आन बान और शान का प्रतीक है।
2: हाँ अनुपम, इसके साथ ही हमारी एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भी है। और हमारी बहनों को ये पता भी होगा कि 22 जुलाई यानी आज ही के दिन इसे अंगीकार यानी स्वीकार भी किया गया था।
3: और बहनों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के तीनों रंग कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। केसरिया साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। तो हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रकृति का प्रतीक।
2: और बीच में बना नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र न्याय, धर्म और निरंतर प्रगति का संदेश देता है। साथ ही तिरंगा देश के प्रति प्रेम, एकता और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता हुआ जहां देश विदेश में लहराता हुआ दिख जाए तो मन में अपार आनंद का अनुभव करा देता है।
3: सच में किरण, तिरंगा हमारा गौरव है, अभिमान है और हमारे देश की पहचान भी है।
2: बिल्कुल, जहाँ हम हस्तशिल्प की बात करें ना अनुपम, तिरंगे की सिलाई या फिनिशिंग की बात करें तो हमारी बहुत सी बहनें उन संस्थाओं से जुड़ी हैं जिनको ये कार्यभार दिया गया है।
3: यानी हमारी बहनें तिरंगे को अपने हाथ के हुनर से संवारती हुई देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रही हैं।
2: बिल्कुल अनुपम, हस्तशिल्प से बहनें आत्मनिर्भर तो बनती ही है, साथ ही दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रही है। बहुत सी बहनों के हस्तशिल्प के नमूने हैं वो सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कोई लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही है, कोई बैग, कुशन, रंग बिरंगी कढ़ाई के आइटम बना रही है, तो कुछ जूट के आइटम बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही है, तो कुछ रंग बिरंगी पेंटिंग के आइटम बनाकर हमारे दिलों में बस गई है।
3: किरण, हाथ के हुनर

0: तो कोई मुकाबला नहीं, यानी खाली समय में ये हमें सुकून देता है और जरूरत के समय रोजगार का साधन बन जाता है।
1: बिल्कुल। तो बहनों आप जुड़ी रहिएगा अपने सुकून भरे कार्य के साथ और साथ ही अपने तिरंगे के सम्मान के साथ, और करिएगा अपनी सेना का भी सम्मान कैलाश खेर जी के इस गीत से।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे, समर्पण का प्रतिमानिए।

0: किरण हर दिन मौसम में परिवर्तन हो रहा है ना, कभी भयंकर गर्मी, तेज उमस और कभी बारिश। और बारिश का मौसम अपने साथ लेकर आता है हरियाली और ठंडक, लेकिन इसी मौसम में पेट के संक्रमण की समस्या भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल अनुपम, और इसका मुख्य कारण है दूषित पानी, बासी भोजन और साफ सफाई की कमी, क्योंकि बारिश के दौरान नमी अधिक होने से भोजन जल्दी खराब हो जाता है और इसमें बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ऐसे भोजन और दूषित पानी से पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं होने लगती है।
0: बिल्कुल बहनों, इस मौसम में हमें कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। हमेशा साफ और हो सके तो उबाल कर पानी को ठंडा करके पिएं, ताजा और गर्म भोजन करें, खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं और बच्चों को ये आदत जरूर डालें, और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
1: अनुपम, साथ ही अब हम बात करते हैं आम की, जिसे फलों का राजा कहा जाता है और वैसे भी आज है विश्व आम दिवस।
0: अच्छा,
1: और आम है ना, ये एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल भी है और सामान्य रूप से संक्रमण का कारण भी नहीं बनता है।
0: लेकिन किरण, बारिश के मौसम में आम को अच्छी तरह से ना धोया जाए या कटा हुआ आम लंबे समय तक पड़ा है तो उस पर कीटाणु पनप सकते हैं और पेट खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।
1: और अनुपम, बहुत अधिक मात्रा में आम खाने से भी कुछ लोगों को अपच, गैस, पेट दर्द या दस्त जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए अच्छी तरह से धुले हुए ताजा आम संतुलित मात्रा में खाएं।
0: क्योंकि आम का स्वाद लेना तो जरूरी है। और साथ साथ बहनों, याद रखें कि छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। और अगर लगातार पेट की तकलीफ हो रही है तो आप बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अभी आप देख रहे हैं मौसम भी बारिश का है किरण।
1: हाँ, और ना अनुपम, वैसे अगर हम बात करें आम की, तो एक छोटी सी रेसिपी क्यों नहीं बहनों को बता दी कि हम घर पे रसमलाई बनाते हैं, यानी दूध को गाढ़ा बना के उबाल के उसमें थोड़ा सा केसर इलायची डाल के, फिर रसगुल्ले होते हैं उनको थोड़ा गुनगुने पानी में भिगो के दबा के उनको फिर उसमें ठंडा करके फ्रिज में दूध उसमें हम डाल देते हैं।
0: अच्छा,
1: फिर कुछ समय के बाद वो एकदम अच्छे से सोख लेते हैं रसगुल्ले दूध को, तो उसमें कटा हुआ आम भी डाल दें, फिर फ्रिज में रख दें, फिर देखो खा के कि कितना अच्छा टेस्ट लगे। पर हाँ, मौसम का पूरा ख्याल रखें। और अभी के लिए मुझे यानी किरण शर्मा और
0: अनुपम पांडे को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही देर में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में सुनवाए जाएंगे।
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Stalemate continues in Parliament over late paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting in Manila in Philippines. Death toll rises to 31.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल।

अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के

0: श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय

0: कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार

0: पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत लीजिए सुनिए अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के। गीत के बोल हैं समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में हमने राही प्यार के फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए, सुनिए कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है सड़क। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू की आवाज़ में आपने सुना सड़क फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा। गीत के बोल हैं समीर के, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना तुमसा नहीं देखा फिल्म से ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। गीत के बोल हैं समीर के, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दिल है के मानता नहीं फिल्म का गीत आपने सुना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में अगला गीत लीजिए, सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कसूर। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गाए कसूर फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित

0: सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे, युववाणी।

0: સદાના સંગ સહેલિયા, સદાના રાજા દેશ, સદાના જગ મે જીવણા, સદાના કાળો કેસ, સદાના ફૂલ વસંત કે સદાના ગ્રીષ્મ ભાણ, સદાના જોબન ઠીર રહે, સદાના સંપત માણ, સદાના કાહું કી રહી ગલ પ્રીતમ કી સી બાહ, ને ઢલતી ઢલતી ઢળ ગઈ તરુવર કી સી છા.
1: ક્યા બાત હૈ દોસ્તો, હર ચીજ કો દેખને કે દો પહેલું હોતા હૈ. हमारे देश में एक शहर है जिसे आदिकाल से माया नगरी कहा जाता है. अंग्रेजों के जमाने में इसे बॉम्बे और आज की दुनिया मुंबई. इसकी मांग कुछ ऐसी है कि कभी बैंकॉक के किसी होटल में हेल्पिंग स्टाफ की नौकरी करने वाले व्यक्ति को 660 करोड़ रुपए का टैक्स पे बना देती है, तो कभी 7 साल की उम्र में किसी चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने वाले व्यक्ति को सदी का सबसे अद्भुत कलाकार ओमपुरी बना देती है, और कभी एक वॉचमैन की नौकरी करने वाले व्यक्ति को नवाजुद्दीन सिद्दीकी मान देती है.
2: बिल्कुल सही कहा माधव तूने, लेकिन इन सबसे परे एक पहलू और भी है.
1: अच्छा.
2: जिधर जैसे ही दृष्टि जाती है, मन मायूसी से भर उठता है. जरा सोचिए, जब पता लगता है कि एक ऐसा 34 साल का नौजवान जिसने 11 नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पास किए, फिजिक्स और मैकेनिक्स के नेशनल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, AIEEE जैसी कठिन परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की और अपनी सफलता का परचम लहराया, वही युवा जीवन के किसी तनाव की वजह से मुंबई के किसी फला बिल्डिंग की फला मंजिल में अपने जीवन को विराम देने की सोच लेता है, तो ये सफलता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है.
1: बिल्कुल, यही तो बात है विशाल, और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दरअसल क्या जो सफलता हमने अर्जित की है वो केवल सफलता है या उस सफलता में कोई सार्थकता भी है. और दोस्तों, आज हमने दो शब्दों सफलता और सार्थकता के बीच के अंतर को समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि आज के दौर का इंटरनेट क्या इस सफलता को सार्थक कर रहा है या फिर एक अच्छे खासे सार्थक जीवन को भी असार्थक बना रहा है. नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके

0: आकाशवाणी की बेहतरीन विशेष पेशकश और आप सबका मन पसंदीदा कार्यक्रम वाणी।
1: और मैं हूँ आपका साथी विशाल। संत कबीर दास जी ने कहा है माधव, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमारी संस्कृति हमेशा हमें यही सिखाती आई है कि संसाधनों की न्यूनतम सीमा वह है जहां हम यह सुनिश्चित कर सके कि स्वयं का पेट भरने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति का पेट भरा है या नहीं।
0: बहुत सही कहा तुमने विशाल। और दोस्तों, जब हमारे जीवन से ना मुझे ऐसा लगता है कि जनहित का हिस्सा यानी कि लोगों के फायदे की चीजें कम होने लगती है ना, तो फिर से सार्थकता का भाव भी कम होता जाता है।
1: सही कहा माधव तुमने।
0: और फिर चाहे वो सफलता कितनी भी बड़ी क्यों नहीं विशाल, और आज के डेट में जो इंटरनेट ने एक शानदार ग्लोबल रीच बनाई है, गांव के दोस्तों किसी मोहल्ले किसी छोटी सी गली के छोटे से घर में बैठा बच्चा स्ट्रीट व्यू के जरिए युगांडा अफ्रीका अमेरिका की गलियां देख सकता है।
1: सही कहा माधव तुमने। लेकिन यहाँ यह सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया की गलियां देखने वाला वह बच्चा क्या अपने मन के भीतर भी झांक पा रहा है।
0: ये बहुत सही कहा तुमने।
1: इंटरनेट ने पिछले कुछ सालों में सफलता के ऐसे नए आयाम स्थापित किए हैं जिन्हें शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है।
0: ये तो है।
1: अगर हम डेटा की बात करें, आज पूरी दुनिया की लगभग 74% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। करीब 5.5 बिलियन से 6 बिलियन लोग,
0: बहुत बड़ी ये संख्या में लोग हैं। लगभग दुनिया का देखें अगर हम ध्यान से तो ये बना देती आ रहा है 74% करीब आबादी, यानी कि सिर्फ 25% आबादी वो जो इंटरनेट से दूर है। और दोस्तों, अगर इसी डेटा को हिंदुस्तान के रिस्पेक्ट में लेना तो विशाल 806 से 954 मिलियन लोग, अगर परसेंटेज में कहूँ तो अराउंड 70% इंडिया आज इंटरनेट यूजर है। और ऐसे में इंटरनेट के सही मायनों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इंटरनेट पर जो बेहद ही ग्लोरियस बैकग्राउंड में बहुत ही मध्यम म्यूजिक वाली रील्स होती है ना, जिन पर एक एस्थेटिक सा फिल्टर लगा होता है जहाँ हर इंसान बहुत खूबसूरत सुखी समृद्ध दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, असल में इस कैनवास के पीछे की सच्चाई बहुत अलग है।
1: बिल्कुल सही कहा माधव तुमने। इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। यह हमारे दिमाग में एक ऐसी आभासी दुनिया बनाता है जहाँ सब कुछ चॉकलेटी और परफेक्ट है, लेकिन वास्तविक दुनिया उससे कहीं अलग है। ऐसे में खुद को यह समझा पाना कि यह केवल एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो गया है। आज यह सीमा तय करना बेहद जरूरी है कि कहीं ये प्लेटफॉर्म हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा।
0: बहुत पते की बात कही तुमने विशाल। और दोस्तों, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इंटरनेट के भी दो पहलू है। एक तरफ विशाल साइबर अटैक, फिशिंग, डार्क वेब और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले हैं, गंभीर अपराध है, तो दूसरी ओर इसी इंटरनेट ने स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई, नए उद्योग और नए एडवर्टाइजमेंट को एक नई उड़ान, नई रीच, एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है।
1: अब यही फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है माधव, कि हम इंटरनेट को अपने सदुपयोग के लिए काम में लेते हैं या खुद को इंटरनेट का गुलाम बनाकर उसका दुरुपयोग होने देते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, कोई भी चीज कितनी परिपक्व और खूबसूरत है यह तभी तय होता है जब उसमें दूसरे लोगों का भी हिस्सा हो।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप किसी चीज को जितना बांट कर सबके साथ मिलकर साझा करके इस्तेमाल करेंगे वो उतनी खूबसूरत होती जाएगी, और आप जितना एकांकी जितना आइसोलेटेड होते जाएंगे उसका रस आपके जीवन में उतना ही कम होता जाएगा।
1: चलते चलते बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, दूसरों का छिनकर खाना यह विकृति है, मेहनत करके सिर्फ अपना पेट भरना यह प्रकृति है, लेकिन दूसरों का भी पोषण हो रहा है या नहीं इसकी चिंता करते हुए मिल बांट कर खाना, यही हमारी संस्कृति है।
0: क्या बात है विशाल, बहुत सही कहा है तुमने। और दोस्तों, इसीलिए आभासी दुनिया से बाहर आने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को अपने प्रियजनों के साथ मिलकर सार्थक बनाइए, और सार्थकता से सफलता का सफर तय करके इस जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाइए।
1: सही कहा।
0: और एक और तरीका है विशाल जिससे अपन इस मानसून को सार्थक बना सकते हैं,
1: वो क्या है माधव?
0: और वो है पेड़ लगाकर, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पेड़ लगाएं। और दोस्तों, पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है जो पेड़ लगे हैं उनको बचाना। तो कोशिश करें जो पेड़ लगे हैं आप उनके संरक्षण को सुनिश्चित कर सके, और जो पेड़ आप लगा रहे हैं उनको पब्लिक इंक्रोचमेंट से, मवेशियों से और उनके इरीगेशन के लिए आप बेस्ट बेस्ट जो चीजें हैं डेवलप कर सके उनके लिए अरेंज कर पाए। ये सृष्टि सबकी है, जितना इस पर हमारा हक है उतने ही पेड़ पौधों और वनस्पतियों का भी। तो

0: जाते हैं, जल्द से जल्द आप पेड़ लगाएं। और आप पेड़ लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कैसे आपका मन बच्चों जैसे खुश होता है, और जब आप उनकी छांव में आपके बच्चे खेलेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा।
1: सही काम आदत तुमने एकदम।

0: दोस्तों बचपन का जो सबसे सुंदर तोहफा होता है वो होता है अलवर सी हंसी। और अलवर सी हंसी आती है एकदम, आप जब एकदम खुश मिजाज होकर के हंसते हैं, खेलते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं तब। लेकिन बहुत जरूरी है आप हंसी के साथ साथ ज्ञानार्जन भी करते जाएं, और इसीलिए हम आकाशवाणी के सेगमेंट में रोज आपके लिए लेकर के आते हैं एक क्विज सेक्शन, जिसके अंदर हम आपसे पूछते हैं दो सवाल और उन सवालों के जवाब जानते हैं प्रोग्राम के अंत में। तो आज के हमारे आपसे दो सवाल हैं, जिनमें पहला है
1: दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन किस स्वतंत्र सेनानी ने तैयार किया था। और दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में हुए अर्जेंटीना और स्पेन के फुटबॉल मैच में किस देश ने जीत हासिल की थी।
0: तो बस अब आप जल्दी से अपने मोबाइल या फिर अपनी किताबों का इस्तेमाल करते हुए इनके जवाबों को खोज करके रखिए। हम बस यूं गए और यूं आए।

0: सडनली स्टाइल गया है पर्पल। जो कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुड्ढू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: विशाल, कभी कभी सोचती हूँ कि आज के जो समय में ये जो सो कॉल्ड कूल या फिर मैंने उनको जो फैशनेबल दिखने की परिभाषा है ना, कितनी तेज बदल गई। अब पहले जहाँ किसी की बुद्धिमत्ता, उसकी फिटनेस या उसके विशेषकर उसके सोचने के अंदाज, उसके एटीट्यूड की तारीफ होते थे, तो वहीं आज लोग छोटी छोटी अजीब सी चीज़ों में स्टेटस सिंबल ढूंढने लगे हैं। बताओ,
6: तुमने बिल्कुल सही बात पकड़ी है माधव। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब कोई ऐसी चीज़ फैशन बन जाती है जो सीधे तौर पर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे धुएं के छल्ले उड़ाना। समझ नहीं आता कि उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट फंसाना कब से मैच्योरिटी या मॉडर्न होने का सबूत बन गया।
5: बस यही तो। और विशाल, इसमें हमें युवाओं के बीच ये कैसा ट्रेंड बनता जा रहा है जो बिना सोचे समझे वो अपनाया जा रहा है। इतने कम उम्र के लड़के लड़कियां लगभग 18 साल से भी कम, 16 साल से भी कम, सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में कूल बनने या उनके ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो सके, उनके साथ बातचीत जारी रख सके, इसके लिए ये चीजें गलत में आ जाते हैं। या वो सोचते हैं कि हम सिगरेट पीएंगे तो लोग हमको सीरियसली लेंगे, जो कि एकदम गलतफहमी है।
6: माधव, वह आज के दौर का सबसे बड़ा मानसिक जाल है। पॉप कल्चर, फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ने इस कूल डूड वाली इमेज को युवाओं के दिलो दिमाग में बहुत गहराई से बैठा दिया है। किसी को तनाव है तो लगता है सिगरेट पी लो, कोई ब्रेकअप हुआ तो धुएं में गम उड़ा दो, और दोस्तों के साथ खड़े है तो स्वैग दिखाने के लिए कस लगा लो।
5: कैसा स्वैग है बताओ, ये जो आपको अंदर से खोखला कर दे, जो चीज आपके फेफड़ों को टायर से भर दे, आपके होठों में रंगत को छीन ले, दांतों को पीला कर दे, 20-22 साल की उम्र में 60 साल का बुजुर्ग बना दे, आपकी सीरियस बना दे, ये कोई फैशन है? और ये फैशन हो भी नहीं सकता।
6: ये फैशन नहीं बल्कि लत की गुलामी है।
5: बिल्कुल।
6: लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से तनाव कम होता है या दिमाग तेज चलता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ निकोटीन पर निर्भरता है।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: जब शरीर में निकोटीन का लेवल घटता है तो इंसान की बेचैनी होती है, और जैसे ही वो अगला कश खींचता है उसे जो राहत मिलती है वो उसे स्ट्रेस रिलीफ समझ बैठता है।
5: यानी कि राहत कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक भ्रांति है। सोचो विशाल, एक इंसान की आजादी कितनी कम हो जाती है जब उसकी सुबह की शुरुआत, उसका पोषक और उसका मूड 1-2 इंच की जो एक कागज की नमी है इसके भरे तंबाकू के अंदर सिमट कर रह जाता है। जो इंसान अपने

0: अपने फोकस के लिए इसी पे डिपेंड हो जाता है। कुंसेन खुद को बहुत मॉडर्न समझ रहा है ये सारी चीजें करके, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत फहमी, वास्तव में उस निकोटीन की सफेद जो डंडी है उसका वो गुलाम बनता जा रहा है।
1: और इस गुलामी की शुरुआत ज्यादातर पीयर प्रेशर यानी दोस्तों के दबाव से होती है माधव।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जब चार दोस्त मिलकर धूम्रपान कर रहे हो और पांचवा मना कर दे, उसे डरपोक पुराने ख्याल का
0: ये बहुत सही
1: अनकूल कह दिया जाता है। बस इसी हिचकिचाहट के में कहीं दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए, युवा पहला कस खींच लेता है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों कब वो पहला कश आपके रोज की आदत और फिर जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी बन जाता है पता नहीं चलता। फिर वही युवा जो कभी खेल के मैदान में दौड़ता था या जिम में पसीना बहाता था, उसका स्टेमिना शून्य हो जाता है, मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होने लगती है। दोस्तों कहते हैं जीवन में किसी न किसी चीज का रोमांच में या आदत में होना बहुत जरूरी है, जिंदगी का स्वाद नहीं रहता। ऐसा लोग कहते हैं ये जो सिगरेट्स और की लत पड़वाते हैं ना, इन ग्रुप के अंदर ये बहुत बड़े प्रचलन है कि आपके जीवन में एक तो ऐसा शौक होना चाहिए जिसके अंदर जीवन लगा रहे, जबकि ये पूर्ण रूप से गलत है। दोस्तों आदत हो सकती है, हैबिट हो सकती है अच्छी चीजों की भी, जैसे संतों को हैबिट थी हरी भजन की, ज्ञानियों को हैबिट है ज्ञानार्जन की, एक संगीतकार को हैबिट है संगीत गाने की, एक खिलाड़ी को हैबिट है खेलने की। लोगों में जब आप खुशियां ढूंढने लगेंगे और लोगों का जब आप लोग आप उसके अंदर अपनी अच्छी चीजों को खोजने लगेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रस या अमृत जो है वो लोगों से निकल के आ रहा है। और दोस्तों वो नशा करना ही है, अगर ये जो बहुत जरूरी है इसे आज की जनरेशन बना के करना ही है, तो मैं कहूंगा कि नशा आप करें ज्ञान का, नशा आप करें संगीत का, नशा आप करें उस परम तत्व ब्रह्मा का, भगवान का, और देखिए आपका जीवन कितना सुंदर होता जाता है। और आप जब ये नशे करने लगेंगे तो आपको लोगों की आंखें खूबसूरत लगने लगेगी, आपको लोगों की नजरों के अंदर परमात्मा नजर आने लगेगा, खुशी नजर आने लगेगी। तो इन नशों से दूर निकल करके जिंदगी को अपने लोगों के साथ जिए, ये ज्यादा खूबसूरत और अच्छा है। विशाल

माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: वास्तव में विशाल, तुम कभी भी चाहे कोई भी रिकॉर्डेड साउंड सुनते हैं, या जैसे अभी हमने जो प्रोमो सुना एडवर्ट इनविटेशन का हमारे बीकानेर के लिए, अंदर हम जो एडवर्ट्स इनवाइट करते हैं आकाशवाणी के लिए, दोस्तों कोई भी संगीत चाहे अगर अच्छा हो, मधुर हो विशाल, तो वो हमें एक अलग सी दुनिया में पहुंचा देता है और उसे सुनकर ऐसा लगता है कि जिंदगी ठहर सी गई है। अगर जिससे

0: पहले दस्तम में जो गाना सुना, कितना खूबसूरत गाना था, उसकी एक एक धुन इतनी शांत, इतनी सुकून देने वाली थी।
1: सही कह रहे हो माधव, गाना खत्म हुआ और ऐसा लगा जैसे दिमाग से दिन भर की थकान उतर गई हो। सच कहूँ तो हम अपनी जिंदगी में न जाने कितनी फिजूल बातों का धुआं उड़ाते रहते हैं, तनाव, चिंता और वो पुरानी आदतें, जबकि असली सुकून तो इस ठहराव में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और सुकून तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम किसी ऐसी जगह की यादों में खो जाते हैं जहाँ हर कोना जिंदा दिल से भरा हो। दोस्तों आप भी तो फुर्सत के लम्हे में बैठते होंगे या फिर गर्मियों की छुट्टियों में जब कहीं जाने का प्लान करते होंगे तो आपके दिमाग में कोई अच्छी सी जगह जरूर आती होगी।
1: और अगर बात पसंदीदा शहर की हो तो मेरे मन में तो सीधे गुलाबी रंग दिखने लगे।
0: भाई तुम्हारे पास हमेशा जब भी मैं जगह की बात करता हूँ तो जयपुर का नाम होता है।
1: अरे माधव, जयपुर चीज ही ऐसी है। अच्छा आप ही बताओ दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शहर में जाए और लगे कि यह तो अपना ही घर है, जयपुर में वही जादू है।
0: ये बात तुमने सही कही है विशाल। वैसे मैं जयपुर जाना मेरा हुक्म होता है और नहीं हो पाता, लेकिन ये बात जयपुर की बहुत सच है कि वो बहुत अपनापन से भरा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, गुलाबी नगरी का जैसे लगे जादू है वहां पर कोई।
1: और वो हवा महल के सामने खड़े होकर उस सुहाने मौसम को महसूस करना, माधव हवा महल की उन खिड़कियों से जब हवा छनकर आती है ना तो लगता है जैसे इतिहास खुद हमसे बातें कर रहा हो।
0: ये बात तुमने एकदम सही कही। और वहां पर ना एक उस पूरे के पीछे जो उनका भाव है, अतिथि देवो भव का जो भाव है, बहुत खूबसूरत है। मुझे आज भी याद है 1876 में मेहमानों के स्वागत के लिए जब पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, कि गुलाबी रंग प्यार और आदरणीयता का जो आत्मीय प्रतीक है कितना खूबसूरत है। पढ़ा था मैंने इसे, मैं तो नहीं था 1876 में, मैंने पढ़ा था तुमसे।
1: यानी प्यार का रंग, और जहां प्यार हो वहां खाना पीना कैसे छूट सकता है। जौहरी बाजार की वो गर्मा गर्म कचौड़ी और ऊपर से गेवर की मिठास, दोस्तों सच बताना सुनते सुनते मुंह में पानी आया या नहीं।
0: तुमने बहुत सही कहा विशाल। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज विशाल जो इतनी तारीफ जयपुर की कर रहा है, आप सबकी जयपुर जाने की टिकट कंफर्म करा करके ही विशाल जाने।
1: सही कहा।
0: लेकिन दोस्तों सच कहूं तो जिंदगी का असली मजा इन्हीं छोटी छोटी यात्राओं में, इन्हीं छोटी छोटी खूबसूरत लम्हों में, इन्हीं अपनों के साथ बिताई हुई चीजों में होती है।
1: और सिर्फ खाने पीने की मिठास ही क्यों, वहाँ की हस्तशिल्प और बाजारों की रौनक भी तो गजब है। जौहरी बाजार की चूड़ियां और नीली मिट्टी के बर्तन यानी ब्लू पॉटरी हर कलाकारी में एक अलग पहचान है।
0: एकदम सही कहा विशाल। और ब्लू पॉटरी तो जयपुर का सांस्कृतिक शान है। शाम ढलती है, अरावली की पहाड़ियों पर बसा नाहरगढ़ का किला पूरे जगमगाते शहर का जो नजारा दिखाता है, अद्भुत।
1: बिल्कुल माधव, ऐसा लगता है जैसे जमीन पर अनगिनत छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे हो। वहां बैठकर हवा के झोंकों को महसूस करना ही अपने आप में एक अनोखा अनुभव है।
0: बिल्कुल। और वास्तव में तो मुझे ना ऐसा लगता है कि जब मैं जयपुर जाता हूँ, स्पेशली जब मैं नाहरगढ़ की तरफ जाता हूँ, तो मन ही नहीं करता कि वहां से आऊं, मन करता ही नहीं कि वहां से लौटें, इतनी खूबसूरत जगह है वो।
1: तो दोस्तों धुएं और तनाव को छोड़िए और जयपुर जैसी किसी हसीन शहर की रंगीन गलियों में अपनों के साथ एक शाम बिताने की योजना बनाइए।
0: क्या बात है विशाल, बहुत सही कहा है तुमने, क्योंकि दरअसल धुएं और तनाव को छोड़कर अपनों के पास आने ही असल जिंदगी है। और जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, मिठास की बात करते हैं, तो एक और ऐसी चीज है जिसमें बहुत मिठास है, बहुत खूबसूरती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नारियल का जो सॉफ्ट कॉर्न होता है वो अंदर होता है और बाहर बहुत सख्त होता है, बाहर बहुत कठोर होता है, वैसे ही वो मिठास जिनके अंदर है वो भी लगभग ऐसे सही है। वो अंदर से बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट, लेकिन बाहर से वो बहुत हार्ड है, और वो है हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी जो इंडियन आर्मी जिसे हम कहते हैं वो लोग। आइए कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं भारतीय सेना पर कुछ संगीत।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित कर

0: करता हूं, मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: विशाल भाई, अचानक से मैंने नोटिस किया ये गाना चल रहा था, हम लोग गाना सुन रहे थे, तुम ऐसे सुस्ते से क्यों लग रहे थे? सब ठीक है?
1: क्या बताऊं माधव, सुबह से लगातार दौड़ भाग करते करते मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, शरीर में बिल्कुल ऊर्जा बची ही नहीं है।
0: वाह विशाल, तुमने भले ही थके थके कहा हो ये बात, लेकिन हमारे श्रोताओं के सामने आज का सबसे जबरदस्त टॉपिक ला खड़ा किया है।
1: अच्छा, यानी कि ऊर्जा और उसके स्रोत।
0: एग्जैक्टली दोस्तों, ऊर्जा यानी वो पावर जो हम इंसानों से लेकर पूरी दुनिया और हाथ में रखे इस रेडियो जिससे आप हमें समय सुन रहे हैं या स्मार्टफोन जो आप चला रहे हैं उसको चलाने के लिए जरूरी होती है।
1: सही बात है माधव, अगर सीधे और सरल शब्दों में कहे तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं।
0: और विज्ञान की किताबें याद करो विशाल, किताबों में हमने बहुत मजेदार नियम भी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है।
1: जैसे जब हम

0: ना खाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा बनती है, और जब हम काम करते हैं या दौड़ते हैं तो वही यांत्रिक ऊर्जा में बन जाती है।
1: और विशाल, ये जब तुम लगातार बातें बोलते हो तो ध्वनि ऊर्जा बनकर पूरे स्टूडियो में ही गूंजती है।
0: सही का वादा। चलो चलो, अब श्रोताओं को यह भी बताते हैं कि यह ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है।
1: जरूर जरूर, क्यों नहीं। जनरली अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पारंपरिक यानी कि अनवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा गैर पारंपरिक यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
0: तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। वो स्रोत जो धरती के सीने में सीमित मात्रा में जमा है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस।
1: और आसान भाषा में कहें दोस्तों, तो ये वो रिसोर्स है जो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, वापस नहीं आते, और इनसे प्रदूषण भी बहुत होता है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए आज पूरी दुनिया का ध्यान रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे है। ये प्रकृति का वो खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता,
1: जिसमें आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और बायोमास एनर्जी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो बायोमास एनर्जी की, तो उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं विशाल। कचरे और जैव उत्पादों से बनने वाली ये बहुत बेहतरीन ऊर्जा है।
0: माधव, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सच तो यह है कि आज भी हमारी निर्भरता कोयले और ईंधन पर बहुत ज्यादा है।
1: और इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है।
0: हमारे श्रोता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं, जैसे कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे बंद करना, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, और जहां संभव हो सोलर पैनल जैसी नई तकनीकों को अपनाना।
1: बिल्कुल, तो आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए, सोलर पैनल की तकनीक को अपनाएं। और अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल व्हीकल है, तो मैं तो आपको कहता हूँ विशाल, जैसे तुम्हारे पास पेट्रोल व्हीकल है तो मुझे तुम्हें भी कहता हूँ, अब तुम अपना दिल थोड़ा बड़ा करो और एक ईवी खरीद लो, क्योंकि इस ईवी से नेचर को भी फायदा होगा और तुम्हें भी फायदा होगा, पैसों की भी बचत और नेचर में भी प्रदूषण नहीं फैलेगा।

0: दोस्तों, आज के हमारे सवालों के जवाब जानने का वक्त आ चुका है। आज का हमारा पहला सवाल था, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन किस स्वतंत्र सेनानी ने तैयार किया था, जिसका जवाब है पिंगली वेकेंगिया। और आज का हमारा दूसरा सवाल था, हाल ही में हुए अर्जेंटीना और स्पेन के फुटबॉल मैच में किस देश ने जीत हासिल की, जिसका सही जवाब है स्पेन। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है रोजगार सूचना का,
1: आइए जानते हैं रोजगार सूचना के बारे में। तो एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है स्टेनोग्राफर की और नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है 162। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th प्लस प्लस RSCIT या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स यदि आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र अभ्यर्थी हैं। साथ साथ डेट की बात करें तो 22nd of July to 10th August of 2026 इसकी डेट रहने वाली है। अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहेगा, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान हाई कोर्ट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं।
0: माधव भाई, ब्रेक के दौरान मैं सोच रहा था कि पिछले सेगमेंट में हमने गाड़ियों, मशीनों और गैजेट्स की ऊर्जा की तो बात कर ली, लेकिन हमारे शरीर रूपी इस सुपर मशीन का ईंधन और सुरक्षा कवच क्या है?
1: क्या बात है विशाल, बहुत शानदार मोड़ दिया तुमने। हमारे शरीर की मशीन को दोस्तों सही सलामत चलाने के लिए सबसे जरूरी है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन और विटामिंस।
0: बिल्कुल माधव, आसान भाषा में कहे तो पोषण हमारी बॉडी का फ्यूल है और विटामिंस हमारी बॉडी की सिक्योरिटी गाइड्स या मेंटेनेंस टीम है।
1: क्या बात है, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है तुमने विशाल। दोस्तों, जब हम संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, फैट्स, मिनरल्स और सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एक परफेक्ट रेशियो के अंदर अवेलेबल होते हैं।
0: सही कहा, अक्सर लोग सोचते हैं कि पेट भर खाना खा लिया तो पोषण मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर खाने में विटामिन्स की कमी हो तो शरीर धीरे धीरे कमजोर लगने लगता है।
1: और इसके साथ साथ सोचता हूँ, अगर खाना समय पर ना खाया जाए तो भी नुकसान होने लगता है। और विशाल, आज जो श्रोताओं को इन बात अभी बता रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से विटामिन शरीर में क्या क्या काम करते हैं, आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे शरीर में कुछ स्पेशल एजेंट्स होते हैं।
0: दोस्तों, सबसे पहले आते हैं एजेंट विटामिन ए, पर ये हमारी आंखों की रोशनी के रखवाले। गाजर, पपीता, हरी सब्जियां या दूध में ये जमकर पाए जाते हैं। अगर आंखें तेज रखनी है तो विटामिन ए से दोस्ती पक्की रखिए दोस्तों।
1: और इसके बाद आते हैं हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये दरअसल एक पूरी हैप्पी फैमिली है, इसके लिए बहुत सारे मेंबर्स है, B1, B2, B6 और B12। सुनने में ये रेल के डिब्बों जैसे लगते हैं, ये वास्तव में है विटामिंस, जिसे पूरे परिवार के सदस्य की तरह बिहेव करते हैं। इनका मेनली काम है हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में बदलना और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखना। दोस्तों, अनाज डेयरी प्रोडक्ट्स में भरपूर मात्रा में मिलते हैं।
0: दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन सी की, यानी हमारा ऑलराउंडर इम्यूनिटी बूस्टर। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर जैसे खट्टे फलों में बैठा यह विटामिन हमारे घावों को भरता है और बीमारियों को दूर भगाता है।
1: और विटामिन डी, वैसे ये मुफ्त के हैं, मुफ्त तो कहना खैर मतलब कह सकते हैं, ये मुफ्त के हैं, सूरज की हल्की धूप से सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं और ये विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों को लोहे जैसा मजबूत बना देता है।
0: यही नहीं माधव, विटामिन ई त्वचा और बालों में चमक बनाए रखता है।
1: क्या बात है, जो कि बहुत जरूरी है अभी।
0: और विटामिन के, चोट लगने पर खून का धक्का ब्लड क्लॉट जमा कर खून बहने से रोकता है।
1: फिर तो बहुत जरूरी है विशाल, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो यूथ है उसको बहुत सारे काम करना पड़ता है और अगर कहीं गिर जाए तो ये तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत नेसेसरी है।
0: इसलिए दोस्तों, जंक फूड और पैकेट बंद चीजों को थोड़ा बाय बाय कहिए और अपनी थाली में दाल, चावल, ताजी हरी सब्जियां, फल और दूध को जगह दीजिए,
1: क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट का आहार ग्रहण करते हैं तो आपकी बॉडी एक परफेक्ट रेशियो के अंदर काम करती है। और याद रखिए दोस्तों, सही पोषण ही बेहतर जीवन का मूल मंत्र है।
0: दोस्तों, उम्मीद है विटामिन की यह मजेदार जानकारी सुनकर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की नई

0: ना मिली होगी।
1: और दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस बारिश के मौसम में आप अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखें, आप अपनों की सेहत का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में बीमारियों के खतरा, फंगल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता है।
0: सही कहा माधव।
1: और समय की एक खास बात और विशाल कि समय दो खास बातें हैं, एक तो खास बात यह है कि वक्त बदलता जरूर है, और दूसरी खास बात यह कि वक्त किसी के हाथ में नहीं रहता। अब हमारे आज के शो को ही देख लो, जब हम हमारे श्रोताओं के साथ बातें करते हैं पता ही नहीं लगता समय कैसे बीतता जाता है।
0: सही काम।
1: और अब घड़ी इशारा कर रही है हमें भी अलविदा कहने का, तो दोस्तों हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको जरूर कहेंगे कि आप इस मौसम में खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, वनस्पतियों का ख्याल रखें, जीव जंतुओं का ख्याल रखें, मानसून के सीजन में पेड़ जरूर लगाएं, और सबसे जरूरी चीज जो आपको इंसान बनाते हैं प्रेम करते रहें, क्योंकि ये प्रेम एकमात्र ऐसी शक्ति है जो प्रभु ने इंसान को बख्शी है, जो उसे मनुष्य के बनने के बाद उसके अंदर आत्मा का संचालन करती है। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इस कार्यक्रम को हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम भी आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर, रात 8:30 पर सुनिएगा लोक संगीत, रात 8 आप सुन सकते हैं संसद समीक्षा। संसद समीक्षा आपके लिए आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। सुगम संगीत सुनिएगा संध्या 7:45 पर।

चर्चा के विषय हैं खरपतवार नियंत्रण से लाभ, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, प्रधानमंत्री सौर घर योजना, अतिवृष्टि बाढ़ के समय पशुधन प्रबंधन। इन सब के साथ कार्यक्रम में लोक गीत और लोक भजन भी होंगे।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चिनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली

0: मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं युगल गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में संसद में चर्चा के लिए तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस ने पैदल मार्च कर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए सीतापुरा में भूमि पूजन किया। और प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने इस पर बाधाएं खड़ी की, जिससे मालूम होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
1: जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन रखा गया। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी नई दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने विद्यार्थियों के संघर्ष को वास्तविक बताया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इधर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच कर अपना विरोध जताया। भाजपा के पैदल मार्च को पुलिस ने पानी की बौछार कर रास्ते में रोक दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिए गए धरने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर

0: टू फेज टू का भूमि पूजन किया। सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड पर यह कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद श्री शर्मा ने मानसरोवर से छोटे चोपड़ तक मेट्रो में सफर भी किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी।
1: जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलादपुरा से लेकर के कोड़ी मोड़ तक लिया है। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा।
0: 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेट्रो परियोजना के इस दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से वित्त पोषित होगी। इसका निर्माण कार्य सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर में 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका इंटरचेंज खासाकोटी पर होगा। वहीं परियोजना के तहत सीतापुरा में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जाएगा, जहां मरम्मत और रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो का विस्तार राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये रोजाना लाखों यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का आधार बनेगी, साथ ही राजधानी के विकास को नई गति देगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अधिकारियों के साथ लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे अधिकारियों को चुनाव से पहले हटाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राजेश्वर सिंह ने बताया कि संबंधित विभागों को 15 अगस्त तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
3: नगरीय निकायों का हम पहले दिन का चुनाव कराएंगे, जो लगभग 35 दिन का कार्यक्रम होगा और 2 चरण में ये संपादित होगा। पिछले 4 साल 3 साल जो है, अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहेंगे किसी भी कैपेसिटी में, तो एक तो उनका ट्रांसफर और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और उससे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव, उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली है।
0: राज्य में 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य विधानसभा की ओर से इस साल मार्च महीने में पारित राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक और राज्य निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार करीब 30 साल पुराने नियम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों और ज्यादा प्रसव भार वाले प्रथम रेफरल इकाइयों में ये पहल चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव ने बताया कि मातृ और शिशु सेवाओं को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए ये पहल की जा रही है। इसके तहत पिंक अप्रैल में तैनात नर्सिंग कर्मी, एएनएम या अन्य प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी प्रसव सखी के रूप में काम करेंगी। वे अस्पताल पहुंचने वाली हाई रिस्क गर्भवती महिला के साथ भर्ती होने से लेकर प्रसव तथा उसके बाद की देखभाल तक के हर चरण में सहयोग करेगी। जरूरत पड़ने पर रेफरल प्रक्रिया में भी समन्वय सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चिन्हित अस्पताल में 24/7 मातृ शिशु हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जो गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों के लिए प्रथम संपर्क केंद्र के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 104 जननी एक्सप्रेस, हेल्प डेस्क और प्रसव सखी की एकीकृत व्यवस्था से गर्भवती महिलाओं के लिए घर से अस्पताल तक निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की युवा हितैषी योजनाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज जयपुर में माई भारत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से पोर्टल को युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को युवाओं से संबंधित योजनाओं, कौशल विकास, इंटर्नशिप, रोजगार, खेल और नवाचार से जुड़े अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। 1947 में आज ही के दिन तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत करने पर विचार विमर्श किया गया था। यह निर्णय केवल राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने के साथ ही देश की पहचान, एकता, लोकतांत्रिक आदर्शों की औपचारिक घोषणा थी। मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने तिरंगे को एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का अमर प्रतीक बताया है। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वर्ष 1987 में आम को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। यह दिवस जैव विविधता और कृषि अर्थव्यवस्था के महत्व को भी दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: आम हर खास आम के लिए एक स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। वेद पुराणों और महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी आम का उल्लेख मिलता है। इसे प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। वर्तमान में देश में आम की 1000 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं। इनमें से विशिष्ट स्वाद, गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर कई को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत प्राप्त है। देश में आम की लिंगड़ा, सफेदा, दशहरी, चौसा, रतौल और अल्फेंजो प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 45-50% मानी जाती है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने बताया कि अब आवेदक 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले ये तारीख 20 जुलाई थी। इस मुकद्दस सफर पर जाने के इच्छुक लोगों की मांग पर इसे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि हज यात्रा के लिए राजस्थान से अब तक 4000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में यंग प्रोफेशनल्स के 5 पदों पर संविदा भर्ती के लिए युवा अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती का उद्देश्य विशेषज्ञ युवाओं की सेवाएं लेकर अपराध नियंत्रण, नशा नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, AI और नवीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। ज्यादा जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले भी संसद में चर्चा के लिए तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस ने पैदल मार्च कर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए सीतापुरा में भूमि पूजन किया। और प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में प्रसव सखी व्यवस्था शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में पिछले माह विकास, सुशासन, स्वास्थ्य, ग्रामीण कल्याण और आधारभूत संरचना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। सुशासन के क्षेत्र में टोंक जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जून 2026 में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के आधार पर जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का पारदर्शी और संतोषजनक समाधान ही सुशासन की पहचान है और सभी अधिकारी इसी भावना के साथ काम करते रहे। जिले के मालपुरा क्षेत्र को इस महीने विकास की बड़ी सौगात मिली। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल

0: में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए जिला अस्पताल भवन और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4-लेन सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मालपुरा क्षेत्र में आने वाले समय में लगभग 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें पेयजल परियोजनाएं, ब्रह्म तालाब का सौंदर्यकरण, भूमिगत विद्युत लाइनें, सीवरेज व्यवस्था, आईटीआई की स्थापना, पशु चिकित्सालय भवन और सड़क विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 15 जुलाई से 5 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व आवश्यक जांचें कर स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने टोडा राय सिंह ब्लॉक की बैठक लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मालपुरा जिला अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थियेटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से अभियान को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान लगातार जारी है। पिछले दिनों जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने टोडा राय सिंह और मालपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविरों में आवासीय पट्टे, आयुष्मान कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और टीबी मरीजों को पोषण किट, मिनी किट तथा अन्य योजनाओं के स्वीकृति पत्र चित किए गए। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। मानपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचोलिया में आयोजित शिविर में एक महीना हगामी देवी की लंबे समय से बंद पड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन कुछ ही घंटों के प्रयास से दोबारा शुरू कर दी गई। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 की संबंध में सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अजमेर संभाग स्तरीय जनसुनवाई अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत कुमार छाबा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें टोंक जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने वीसी के माध्यम से भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सहकार सप्ताह आयोजित किया गया। सप्ताह के तहत कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों, व्यवस्थापकों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। टोंक जिले में भी एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। मॉनसून के सक्रिय होने से कई स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माय संसद माय चर्चा सारू तैयार। जयपुर माय भाजपा कांग्रेस पैदल मार्च कैरर एक दूजा खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर सारू सीतापुरा माय भूमि पूजन की नो। प्रदेश रा सरकारी अस्पताल में बढ़ता जोखिम वाली आस वाली लुगाइया सारू प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करी जावेला। समाचारों सगे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदन री कार्रवाई नीट परीक्षा पेपर लीक मामला समेत न्यारा न्यारा मुद्दा मत है विपक्षरा सदस्य रा हंगामा रा कारण आज ही ठीक ढंग नहीं चल सकी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार पावस सत्र का पहला दिन हुई नीट परीक्षा पेपर लीक मामला मत चर्चा सारू तैयार है। संसद भवन परिसर में खबर नवीसन सागे बातचीत करता था कार रिजिजू कहो कि ई चर्चा सारू नियम तय करिया जाना चाहिए। वे कहो कि सरकार विपक्षरा दलों ने ई मुद्दा माथे खुली चर्चा सारू बुलाया हा पर वे ई माथे अड़चन पैदा की नी।
2: जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हो तो बोलना ही है।

0: चर्चा के दौरान हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का नियम काल प्रधानमंत्री रहवास समय बिना मंजूरी धरने देवन की कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी आज नई दिल्ली में राखी जय संवाददाता सम्मेलन में बताई जो केंद्र सरकार विद्यार्थियों सागे है और नौजवानों का भविष्य की हिफाजत करने माथ है वो खास ध्यान है। विपक्षरा नेता राहुल गांधी री ओर ई मुद्दा मत है नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जी व विद्यार्थियों री लड़ाई में असली बताई। राहुल गांधी शिक्षा व्यवस्था मत है नुआ सिरों काम करण री जरूरत मत है जोर दिनो। प्रदेश में आई ई मुद्दा मत है भाजपा और कांग्रेस री ओर प्रदर्शन के नीचिया दोनों पार्टियां एक दूजारा प्रदेश मुख्यालय री ओर कूच कर विरोध जतायो। दोनों पार्टियों ने पैदल मार्च में पुलिस पानी री बौछार कर रोक दीना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ लोकसभा में विपक्ष नेता री ओर प्रधानमंत्री रहवास समय दिया जा धरना ने लोकतांत्रिक मूल्य ने खिलाफ बतायो। कांग्रेस री ओर करी जा प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य का पहली वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल भया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम रो सीतापुरा मेट्रो यार्ड में भूमि पूजन कीनो। इन पाछे वे मानसरोवर छोटी चौपड़ ताई मेट्रो रेल में सफर कीनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का मुख्यमंत्री कहो के मेट्रो रेल सेवा रो नेटवर्क बढ़ जावणो सार्वजनिक परिवहन और तेज वेला।
2: जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक हो गई थी। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलादपुरा से लेकर के तोड़ी मोड़ तक लिया है। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा।
1: 13,000 करोड़ रुपए भत्ता खर्च वाली मेट्रो परियोजना का दूसरा दौर में प्रहलादपुरा टोडी मोड़ ताई 41 किलोमीटर लंबो कॉरिडोर विकसित करो जावेला। और ब्यूरो मुना खबर नवीस।
3: ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से वित्त पोषित होगी। इसका निर्माण कार्य सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 कॉरिडोर में 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। इसका इंटरचेंज खासाकोटी पर होगा। वहीं परियोजना के तहत सीतापुरा में अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो भी बनाया जाएगा जहां मरम्मत और रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेट्रो का विस्तार राजधानी जयपुर के बढ़ते यातायात को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये रोजाना लाखों यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का आधार बनेगी, साथ ही राजधानी के विकास को नई गति देगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में साफ कोई सागे निपक्ष और शांति करावण सारू मोटा पैमाना माथे प्रशासनिक फेरबदल रहो कम दिना है। आयोग साफ कीनो है कि गृह जिला गृह नगरीय क्षेत्र और गृह पंचायत समिति में तैनात अहलकार सा गई लंबा वगत एक ही ठोर काम कर रहा अहलकार ने चुनाव पहले हटाया जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि संबंधित महकमा ने 15 अगस्त ताई तबादला नो काम पूरा करण सारू कही चियो है।
4: नगरीय निकायों का हम पहले दिन का चुनाव कराएंगे जो लगभग 35 दिन का कार्यक्रम होगा और दो चरण में ये संपादित होगा। पिछले 4 साल 3 साल जो है अगर वो उसी जिले में पदस्थापित रहेंगे उसी विकल्प से क्यों, एक तो उनका ट्रांसफर और दूसरा जो गृह जिला है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इस बार हम लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक और प्लस जो विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और उससे ऊपर के अधिकारी और नगर विकास न्यास के सचिव उनको इस सूची में विशेष रूप से शामिल किया है क्योंकि ये पद भी प्रभावशाली है।
1: राज्य में अब 32 संतान वाला ही पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेगा। विधानसभा री ओर इन साल मार्च महीने में पास करी जिया राजस्थान पंचायती राज संघ

0: সংশোধন বিল আর রাজ্য নির্বাচন আয়োগ রা নয়া দিশা নির্দেশনা মুজব ইনু জুড়িয়া 30 সাল জুনা নিয়ম খত্ম করতে হচ্ছে হ্যাঁ এই সমাচার আপ আকাশবাণী জয়পুর আজমের সুন রিয়া হো રાજ્યના સરકારી અસ્પતાલોમાં ઘણા જોખમનો સામનો કરી રહી આસવાળી લોકોના સુવિધા સારું પ્રસવ સખી વ્યવસ્થા શરૂ કરી ચાવેલા પ્રદેશના મેડિકલ કોલેજમાં જોડ્યા અસ્પતાલના જિલ્લા અસ્પતાલના બધા જાપાવાળી પ્રથમ રેફરલ એકમોમાં નેરા નેરા દોરમાં સુવિધા મુહૈયા કરાયો ચાવેલા ચિકિત્સા સ્વાસ્થ્ય વિભાગના શાસન સચિવ આ જાણકારી દીની वे बतायो कि पिंक एप्रिल में तैनात नर्सिंग कर्मचारी एएनएम या दूजी सिखावण लियोड़ी महिला स्वास्थ्य कर्मचारी प्रसव सखीरा तौर काम करेला वे बत्ता जोखिम सागे आवण वाली आस वाली लुगाइया रे अस्पताल में भर्ती भीमण लेर व पाछरी देखभाल ताई रा हर काम में मदद करेला श्रीमती राठौड़ बतायो कि हर चिन्हित अस्पताल में 7 दिन 24 घंटा काम करण वाला मातृ शिशु हेल्प डेस्क बनाया जावेला वह कहो कि 104 जननी एक्सप्रेस हेल्प डेस्क और प्रसव सखीरा तालमेल वाली व्यवस्थाओं आस वाली लुगाइया ने घरों अस्पताल ताई बिना अड़चन सेवा मुहैया कराने तय करो जावेला मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार रे नौजवानों रा भला सारू चलाई जा रही योजनावा ने माई भारत पोर्टल नु जोड़वा रा हुकम देना है वे माई भारत पोर्टल ने असरदार तरीका लागू करन सारू आज जयपुर में राखी जी मीटिंग में बोल रहा है मुख्य सचिव कहो कि युवा मामला और खेल मंत्रालय री मदद ई पोर्टल ने नौजवानों सारू सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रा तौर और मजबूत बनाया जा रहा है वह सगा महकमा ने नौजवानों जुड़ी योजनावा कौशल विकास इंटर्नशिप रोजगार खेल और नवाचार जुड़िया मौका एक ही मंच माथे मुहैया करावन रा हुकम देना आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस है साल 1947 में आज इरा दिन तिरंगा ने आजाद भारत रा राष्ट्रीय ध्वज रा रूप में स्वीकार करन रे बारा में विचार करी चियो हो ओ फैसलो देश रा झंडा ने स्वीकार करन सागे देश री पहचान एका और लोकतांत्रिक आदर्शों रो औपचारिक ऐलान हो ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जनता ने शुभकामनावां देता थका तिरंगा झंडा ने एका अखंडता खुद रो मान और गौरव री अमर निशानी बतायो आज राष्ट्रीय आम दिवस है आम ने बधाओ देवन सारू राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड साल 1987 में ई दिन रे शुरुआत की नी ही ओ दिवस जैव विविधता और खेती बाड़ी जुड़ी माली व्यवस्था रो महत्व ये बतावे है पेश है एक रिपोर्ट
1: आम हर खासो आम सारू केवल स्वाद वालो फल ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति रोई अभिन्न हिस्सो रो है वेद पुराण और महाकवि कालिदास रे रचनावा माए ई आम रो जिक्र आवे है इनमें प्रेम और बरकत रे निशानी मानी जावे है मौजूदा दौर माए देश माए 1032 भातरा आम रे पैदावार ली जावे है आमाए वो खास स्वाद गुणवत्ता और क्षेत्रीय पहचान रा आधार केई ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेती मूल गयो है आमरी लंगड़ा सफेदा दशहरी चौसा रतौल और अल्फेंजो खास किस्मा है भारत आमरी उपज लेवण वालो दुनिया रो सबु मोटो देश है दुनिया माए आमरी कुल उपज रो 45% हिस्सो भारत रो मानियो जावे है समाचार कक्षो सलेहा गाजी
0: हज यात्रा 2027 सारू ऑनलाइन तरीकाओं अब 24 जुलाई तक अर्जी दी जा सके है केंद्रीय हज कमेटी रे मुजब हजरा मुकद्दस सफर माथे जावन री मर्जी राखन वाला री मांग पाछे तारीख 20 जुलाई बधार 24 जुलाई करी छी है हजरा मुकद्दस सफर माथे जावन सारू प्रदेश रो हाल ताई 4032 अर्जी दाखिल करी जा चुकी है 26 जुलाई दीतवार में आकाशवाणी प्रसारित करने जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार बतावेला हर महीना प्रसारित करने जावन वाला इन कार्यक्रम रे 136वीं कड़ी फैला इन सारू आप ही 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे सुझाव भेज सको हो नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम के जरिए ये विचार भेजा जा सके है

0: राजस्थान पुलिस मुख्यालय में नौजवान पेशेवराना पांच ओहदा माथे संविदा रा आधार भर्ती सारू युवा उम्मीदवारों अर्जियां मांगी ची है। जानकार नौजवान री सेवा लेर अपराधा और नशारी लत माथे काबू करण, सड़का माथे हिफाजत, एआई और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीके लागू करण सारू भर्तियां करी जा रही है। आखिर में खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में संसद में चर्चा सारू तैयार। जयपुर में भाजपा और कांग्रेस पैदल मार्च कर एक दूजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर सारू सीतापुरा में भूमि पूजन कीनो। और राज्यरा सरकारी अस्पताल में बत्ता जोखिम वाली आस वाली लुगाइयां सारू प्रसव सखी व्यवस्था सारू करी जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो हो मानो आगले समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। हमारे ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों ने अनिल सिंह किचड़ा घना घना राम राम। और आज हमारे साथ है
1: अश्वनी व्यास और अश्वनी व्यास रवि घना घना राम राम। अनिल भाई थाने भी राम राम।
0: राम राम अश्वनी भाई राम राम। देखो आपा जी की खेती बाड़ी की बात करा अश्वनी भाई तो मैं आपा सबसे पहला ध्यान रखा कि बिरखा की जी टेम आवे नी वे सर आपा ध्यान देवा कि भाई बिरखा के तरीके से हुई है अगेती बिरखा हुई है तो आपा जी अगेती जी बिजान करा तो भी मैं आपा फसलों की जी अगेती किस्म चुनाव करा और जो पछेती बिरखा हुई है तो आप पछेती जी फसलें हैं उन्हें बिजान करने पर ध्यान देवा और उन्नत किस्म और जो आप इसका बिजान रो टेम है वह अनुसार ही जी किस्म चयन करा मैं सु आप कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन ले सका।
1: बिल्कुल अनिल भाई थे बात चोखी कही कि बरसात रे अनुसार आप चयन करा। बरसात रो दौर है मानसून अब अपने द्वार पर ही खड़ो है जमाजम बरसात भगवान की कृपा सु हो भी सी तो बरसात री टाइम खेत रे मायने प्राकृतिक रूप से उगन वाली जी की फसल है जिके ना आप खरपतवार भी कहवा करा हा पर जगह जगह उग जावे। तो अनिल भाई आज की खरपतवार है आ मिट्टी ने बड़े नुकसान पहुंचावे क्योंकि जिकी पौध आपने खेत में लगानी है बिना जिका पोषक तत्व मिलना चाहिए था बी सगला रो आ खरपतवार खेच ले वे बिना प्रयास रे खरपतवार लग गया तो तेज गति से बढ़े और फसल रो चोखा दाम किसान भाई ने को नहीं मिल पावे।
0: अश्विनी भाई थे जो कि यह बात कही उन्हें ऐसो आपने सगला किसान भाई बहन परेशान भी है और ऐसे समाधान खतर कई किसान बहन जगह ऐसा कदम उठावा जो नहीं उठाना चाहिए जी आप देखा कि खरपतवार रही रासायनिक जो कि दवाया रो छिड़काव है खत्म करने खातर उन्हें छिड़काव करे वो कि एक फसल ने तो सागे सागे नुकसान पहुंचा हुआ ही है और भाई जो कि फसल री है वह खरपतवार तो नष्ट हो जाए फसल री गुणवत्ता गिर जाए और मैंने सागे सागे आपने खेत री जो कि भूमि है वह भी बांझ हो जाए तो खरपतवार खत्म करने खातर कहने मतलब है कि भाई आप कभी भी रासायनिक पदार्थों रो छिड़काव ना करा आप हाथ से खरपतवार ने उखाड़ देवा कसिए से उखाड़ देवा या फिर अपनी जो कि त्रिफली है ऊंट पीछे बैल रे पीछे वैसू आप उखाड़ देवा या फिर आप ये है कि भाई जो कि खरपतवार है वह कम हुआ है खतरे की कि जुताई कर फिर बिजान कर देवा तो वैसू भी जो कि खरपतवार है वो कम हुआ है तो आप जब ऐसा तरीका अपनावा जिसमें खरपतवार अपने खेत में कम हुआ है और अश्विनी भाई देखो थे आजकल कभी आधुनिक तकनीक खेती बाड़ी हुआ है
1: बिल्कुल
0: और सावनी जी की फसल की बात करा आप तो सावनी की फसल में आप देखा कि भाई जो कि

0: सब्जी की फसल है, पैदावार है, वो भी आप बड़े क्षेत्र पर लिया करा, और उन फसलों में नहीं खरपतवार ज्यादा हुआ है क्योंकि उन्हें बीच में जो आप इसका खाली जगह ज्यादा हुआ है, तो आपने देखा आजकल मीणियो बिछार जो पौधो है नी, मैंने गमलो गमलो खाली रखे बाकी मीणियो लगा देवे, तो वह सुखे खरपतवार कम हुए, और जिते भाई बंधु कहीं मीणी नहीं है तो वो आप जो फसलों अवशेष बचुड़े नी वो भी बिछा देवे उन्हें बीच में, तो जकी खरपतवार है वह कम हो गए।
1: वो अनिल भाई बहुत चोखी थे खरपतवारी जानकारी दी, किसान भाई खरपतवार नियंत्रण से चोखो लाभ कमा सके, फसल ने बचा सके, मिट्टी की गुणवत्ता बनाई रख सके और चोखो लाभ कमा सके। तो अनिल भाई देखो अब आपा कार्यक्रम में थोड़ा सो आगे ले चला अगले गीत लखा रही है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनी भाई देखो अब आप संदेश सुने और संदेश से पहला मीठो सो लोकगीत सुने और आप जी बात करा अपनी खेती बाड़ी रही और खेती बाड़ी की बात आप करा जब हम देखा कि भी सरकार है नी वह भी अपने टेम टेम सर्व आगे बढ़ाने के खातर घनी योजना ले रहा है। अपना जी फसल है उन्होंने खरीद फरोख्त में भी अपना सहायता करे और ऊंचा भाव देने खातर जी फसल रही MSP भी लागू करे और मैं सर्व किया आप फसलों में ऊंचा दाम पर बेच पाव पर जी दलहनी फसल है नी उन्होंने उत्पादन बढ़ाने खातर अपनी भारत सरकार उन्होंने जो बीज है वो भी वितरण पर ध्यान देवे कभी उन्नत किस्म का बीज है वो किसानों ने दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जाए और मैंने बाजार में लाई जाए ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। और आप एक और देखा सुनी भाई कभी आप फसल चक्कर अपनावा नहीं वैसे भी आप फसल का उत्पादन बढ़ा सका जी बात करा कि दलहनी फसल एक बार बीजान कर दियो तो एक बार एक दाना जी की फसल हुआ बैरू बीजान कर देवा जी हाँ गेहूं है बाजरो है अपना और फसल है ग्वार है उन्हारो बीजान कर देवा बाद में आप जी हाँ मूंग है मोट है चनो है बैरू बीजान करा तो उथली और गहरी जटा परिवर्तन करता रहा वैसे भी अपना उत्पादन भी बढ़ा और सरकार की जो की योजना है वह भी सफल हो जाए।
3: बिल्कुल अनिल भाई जी थे बात बताइए बात दलहनी फसलों पर तो केंद्र सरकार एक योजना भी चल रही है दलहनी आत्मनिर्भरता मिशन ने ले पर और आज की योजना है 11 अक्टूबर 2025 में इरी शुरुआत करी गई थी और इर माने सरकार कुछ विशेषता में ऐसी रखी है कि दलहन रुज को उत्पादन ने बिना 242 लाख टन से बढ़ार 350 लाख टन करने रो टारगेट सरकार रखे हो गया है और खेती रो दायरो जी को है वो भी बढ़ाने सारू सरकार प्रयास करिया है।

0: 275 लाख हेक्टेयर सुलेर और 310 लाख हेक्टेयर तक इन्हें बढ़ायो जा रहा है। ई योजना रे अंतर्गत किसान री आय ने सुनिश्चित करण वास्ते आगमन आले चार वर्षा रे मायने तुअर है, उड़द है और मसूर है, इन्हें 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर लेने की बात सरकार कही है। बीज वितरण रे वास्तव भी किसानों ने बहुत चोखो लाभ योजना के तहत दियो जा रहे है, जिकर मायने किसानों ने 88 लाख मुफ्त बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज जिका है वे बांटे जा रहे है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण योजना रे माने लगभग 2 करोड़ किसानों ने योजना रे तहत लाभ मिलने की उम्मीद है। तो अनिल भाई, आज की राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भर योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, आ किसान भाइयों वास्ते वरदान हो सी। मुख्यतः वे किसान भाई जी का दलहनी फसलों रो ही उत्पादन लिया करे है, तो वे चोखो दाम कमा पासी और सरकार द्वारा भी बिया ने पूरी पूरी सहायता मिल सी।
1: देखो सुनी भाई, ते सच्ची बात कही के भी किसान भाई बहना खातर वरदान हो सी, पर सगड़ा किसान भाई बहना खातर वरदान को नहीं हुआ जका जागरूक है और एक दूसरे ने योजना की जानकारी देवे और योजना से जुड़े रहे उन्हें खातर वरदान हो सी। और आप कोशिश करा कि अपना जगह सगड़ा किसान भाई बहन योजना रो फायदा उठावे, तो आप ज्यादा से ज्यादा योजना के बारे में एक दूसरे ने बतावा और जो आप कह सका प्रमाणित बीज और उत्पादन बढ़ाने में जी आपने सहायता सरकार देने लग रही है, पर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठावा, जागरूक मना और अपना भाई बहनों जागरूक करा।
0: बिल्कुल अनिल भाई, बहुत विस्तार सुथे राष्ट्रीय दलहन आत्म परियोजना मिशन के बारे में जानकारी दी, घनाकर किसान भाई जी का लाभ अब उठा पासे। लेकिन कार्यक्रम में अब आप सुखा अगलो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो अनिल भाई, अब आप के तड़लो सुना और अब आप आगे बात कर सा प्रधानमंत्री सौर घर योजना दी। तो आज की योजना अनिल भाई, प्रधानमंत्री सौर घर योजना इरे मायने लक्ष्य रखे गए कि 300 यूनिट तक बिजली जी की है बा मुफ्त प्रदान करी जावे। बाकी यहाँ करी सी कि ई योजना रे जी का लाभार्थी लोग है बिया ने सबसे पहला सोलर पैनल जी को है वो लगाना पड़ सी और वो खरीदने वास्तर ब्रिज की खरीदो सी बी पर सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान करी जा सी। और आज की सब्सिडी है आ कंपनी खाना को नहीं जावे, आज को लाभार्थी है बीरे खाते में खुद सी। तो अनिल भाई, इरमाय ने जी की सब्सिडी है बा 1 किलोवाट क्षमता तक अगर कोई किसान भाई या कोई भी आदमी ग्रामीण व्यक्ति लगावे तो बिना 30,000 तक री सब्सिडी मिल जासी। अगर मान लो बियाण उपयोग ज्यादा है और 2 किलोवाट क्षमता तक री सोलर प्लेटा लगवावे तो 60,000 रुपया री सब्सिडी है और कोई ने बहुत ज्यादा आवश्यकता है और 3 किलोवाट या इसु ज्यादा अगर कोई भी प्लेट लगावे तो 78,000 रुपया तक रीज की सब्सिडी है व किसान भैया ने मिल सी। सोलर पैनल रे जो को इंस्टॉलेशन है इसु हर महीने 300 यूनिट तक बिजली जी की है बा मिलती रहे।

0: बा मुफ्तोसी और बिलो लाभ उपभोक्ता ले पासी। लेकिन अनिल भाई एक बात ध्यान रखने दिए कि इनमें पात्रता रो भी निर्धारण करियो गयो है। तो भारत राज्य का नागरिक है भाई रा पात्र होसी घर री छत पर सोलर पैनल लगावन वास्तर उपयुक्त छत होनी ज्यादा जरूरी है। घर में एक वैध बिजली रो कनेक्शन होना चाहिए और आवेदन करने से पहला सौर पैनल वास्तर राज्य री या केंद्रीय कोई भी योजना रो लाभ नहीं मिलो होवे वही इरमाने लाभ रो पात्र रखे। अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करा नील भाई आपा तो इर वास्ते आपा ने पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जार विजिट करना है। बटे जारे राज्य जिले और बिजली वितरण कंपनी रो नाम रो चयन करो खुद रो रजिस्ट्रेशन करना है। फिर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन होसी फॉर्म भर परो और रूफटॉप सोलर वास्ते आवेदन होसी। इरे बात विजिबिलिटी जिकी है बेरो अप्रूवल मिलसी और रजिस्टर वेंडर रे द्वारा यानी जिको बेचणियो है पैनल ने बिरे माध्यम से पैनल लगायो जासी और पैनल रो जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा होने रे बाद नेट मीटर लगायो जासी। डिस्कॉम द्वारा बिरो निरीक्षण होसी। बिरे बाद जिकी सब्सिडी री राशि है वा उपभोक्ता रे खाते में दे दी जासी।
1: तो देखो सुनी भाई ते कितनी चोखी जानकारी दी गई है। अगर जिकी भागदौड़ री दुनिया है एमें आपा जिकी आधुनिक मशीनरी आधुनिक जका कैस का भी उपकरण है उन्होंने आपा ज्यादा से ज्यादा काम लेवा और उन्होंने आपा जिकी इसी ऊर्जा ने काम में लेवा जिकी खत्म नहीं हो सके समाप्त नहीं हो सके। तो वे खातर जिकी या योजना के बारे में थे जानकारी दी बहुत ही अच्छी जानकारी है और सगला भाई बंधु ए योजना की जानकारी ले रहे योजना को फायदे भी उठासी। वही सागे सागे जका अपना सीमित संसाधन है उन्होंने भविष्य के खातर सुरक्षित रखने खातर ए योजना से ज्यादा जुड़सी और ए योजना रो फायदा उठासी। और अब देखो फायदा री बात करा तो अब अपन आगे गीत लो सुना

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सुनी भाई आभार, अपना संदेश सुने और संदेश से पहला मीठो सो लोकगीत सुने और आभार देखा है कि भाई आपने अखबार में भी थे बच्चों को कि भाई 10 दिन हमारी जो कि बारिश है बिरखा दिन बताया गया है, ज्यादा से ज्यादा बिरखा हो सी तो भाई मैं अपन ध्यान भी रखा कि भाई आपने जो कि फसलों रो भी जान तो अपना टाइम माता करा ही करा बहन सागे सागे आपने जो कि कई बार देखा कि भाई कई जगह बादल फट जाए या फिर कोई बाढ़ आ जाए या अतिवृष्टि हो जाए तो भैंस भी बचाव अपन बहुत ही जरूरी है और पहले सो सावधानी रखा नहीं जब भी आप वह टाइम सावचेत रह सका और फायदा उठा सका यानी अपने पशुओं को अपने मिनका अपने टबरियां अपना बचाव कर सका तो ऐसा रू पहला सो आप व्यवस्था रखनी बहुत ही जरूरी है और ऐसा रू देखो आप यहाँ बात कर सका कि भाई अपना जो घर बार है उन्हें जो नजदीक ऊंची जगह है वह आप खाली रखा जे आप

0: कोई ईश्वर संकेत मिले तो अपना पशु और अपने टबरियन ले अपना ऊंचे स्थल पर चले जावा जिसमें अपने बचाव हो जाए।
1: बिल्कुल अनिल भाई, तो समय पर अगर किसान भाई और पशुपालक भाई ये चीज ध्यान रखे कि बरसात रे मायने कठी नाली बन रही है या कठी नदी सूखी बनिया करे है, जठे अगर पशु बांधा करे तो बठे बार नहीं बांधे, कोई ढालरी जगह है कोई मिट्टी की गीली जगह तो बठे भी पशुआ नहीं बांधे, पशुआ ने बांधने वास्तर ऊंची समतल और कठोर जगह रखे ताकि बरसात रो प्रभाव अतिवृष्टि रो प्रभाव किसी भी रूप में अपने पशुपालक भाई रे पशुओं पर नहीं पड़े और पशु सुरक्षित रहे। अगर पशुआ में कोई परिवर्तन देखने मिले तो समय पर डॉक्टर साहब से सलाह कर और टीकाकरण दवाई करा देवे तो पशु स्वस्थ रहे बदलते मौसम
0: रहे। साथ साथ आप यह भी ध्यान देवा सुनी भाई आप नहीं अलग जो है कभी जिसकी अतिवृष्टि या बाढ़ रो कोई संकेत अपन मिल गए है तो आपने पशुओं का नजदीक कोई ऊंची जगह नहीं है या अपन उन्होंने ठोर ठिकाने नहीं दे पावा तो उन्होंने जकी रस्सी है वगैरह से निकाल देवा और उन्होंने खुलो छोड़ देवा ताकि पशु आप रो ठोर खुद देख लेवे ले कि आप उन्होंने बांध बंधे रहे तो वह बैठे ज्यादा परेशान हो जाए और जो बाढ़ ज्यादा प्रकोप हो जाए तो पशु आप ही जान भी चले जाओ तो ऐसा काम नहीं करा। आपने अगर कोई व्यवस्था नहीं हुआ तो उन्होंने कड़े भी जकी पट्टी है वह निकाल देवा और खुलो छोड़ देवा या फिर आप उन्होंने व्यवस्था करा ऊंचे स्थान रही और अपना जो कि कोई भी संकेत हो तो पहला मिलते ही अपना जगह भाई बंधु है उन्होंने भी अपना जागरूक करा और सिंचाई टीम है जो सुना मीठो सो हर्जस।

ग्रामीण श्रोता अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए युगांतर सिंदूर की गाई हुई ये गजल।

में लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। श्री टेनिटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश

भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी की एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क), भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करा।

फटकारा चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसिम की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सुरेश वाडकर और साधना स्वर सरगम के युगल स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है अनजाने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुकेश को आपने सुना, फिल्म का नाम था जिंदगी और तूफान। कार्यक्रम के अंत में सुनिए ये गीत स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम है दिल की राहें।

लता मंगेशकर के गाये इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मेरी भी 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अब्दुल गनी का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

बद्री व्यास और मलय दास के गाए हुए इस लोक गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात रात 9 बजे अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने है और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का

0: प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्रों के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह की मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है।

0: सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसने की आशंका है। मानसपतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए जुएल थीफ फिल्म में लता मंगेशकर और भूपिंदर को।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए फिल्म राजा रानी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, ऐसा हम आपके लिए आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से

0: Jack Abishekek. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटा

0: सा गांव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहां कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है, Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे कि इस समय देश भर में और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रखते दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना

0: ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
1: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,00,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासले जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेट्रल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेट्रल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि मुझे रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपनी उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेन करने तक मार्केटिंग के स्तर, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है। और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है, और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों की थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं और बड़े हुए हैं लोग। इस तरीके के उदाहरण, जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया जिस तरह से छोटी जगहों पर, इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी,

0: उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफएमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% तो लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरवीर सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह है जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, फल और उसके जो प्रोसेस्ड है पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है।

0: जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं, वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, तो मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस्ड फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले, तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है। और इसको क्योंकि बात इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, और उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये भी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद है वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको

0: लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
1: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती। फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में, ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, तो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है, और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है, तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मानता, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया है, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, तो वो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था आपने तो सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMI के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें। उसको जब आप इस FM PM FME से जोड़ेंगे,

0: तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। सर मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया और उनको एक मेंबर बनाकर के किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात के 10 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए आशा भोसले को, फिल्म का नाम है 2 बूंद पानी।

0: सो संदेशा मोरा कईयो जा।
1: तुम नहीं समझोगे कौल साहब, कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में, हमारी सूखी प्यासी धरती में, तो बूंद पानी के कारण एक आदमी दूसरे की जान ले, तो बूंद पानी के कारण एक छोरी

0: की इज्जत का खून हो जावे जैसे मारी सोनकी का हुआ।
1: सोनकी कौन? तुम्हारी बहन?
2: तुमने ही तो कहा था पहले जान पहचान
1: फिर दोस्ती और फिर प्यार।
2: तुम अपनी जान पहचान करो, तुम अपने मुल्क के बारे में बताओ।
1: किसी कवि ने कहा है कि कश्मीर स्वर्ग है, चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली हरियाली, चंचल नदियां इटलाती हैं, शोर मचाती हैं, मगर झील में गिरकर शांत हो जाती है। प्रेमी जोड़े शिकार में बैठकर चांदनी रात की सैर करते हैं। जी चाहता है इस वक्त हम भी एक शिकारे में होते और तुम मेरी बाहों में टोलते।
3: क्या हो सके है कि नहर जल्दी हमारे गांव पहुंच जाए, हमें और कोई इंतजार करना नहीं पड़े।
1: दूसरी सूरत यह है कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जो ना सिर्फ रेत में दबी हुई चट्टानों को तोड़ दे बल्कि इन सब सरकारी दिमागों में हलचल मचा दे।
3: तो ये काम मैं करूंगा साहेब।
1: गंगा तुम अकेले क्या कर सकते हो?
3: मैं वही करूंगा जो फरहाद ने किया था।
4: आज राजस्थान नहर के अंतिम भाग का उद्घाटन

फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थे, स्वर था हेमलता का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज कार्यक्रम में सुनिए मोइनुद्दीन खान का सारंगी पर बजाया राग मारू बिहाग। तबले पर इनके साथ संगत कर रहे हैं रहमान खान।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने मोइनुद्दीन खान का सारंगी वादन सुना। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारे महिला सांसदों के साथ

0: असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established